फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार। वंदन वार,
1: ये है विविध भारती।

Chintan. रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मन ही इंसान को ज्ञानी अज्ञानी सुखी या गुलाम बनाता है। बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। मन एक खेत या मंदिर की तरह है, जहां आप जैसे विचार रूपी बीज बोएंगे वैसी ही फसल या जीवन का सत्य प्राप्त होगा। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको बता देते हैं दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 327। संगीत सरता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। स्वरमंडल और मांसुरी वादक अरविंद गजेंद्र गटकर को आप सुनेंगे, प्रस्तुति छाया गांगुली। सात बजे भूले बिसरेगे 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और दिन में 2 आप सुनिए त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर नेहा अगरकर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक।

सुबह और रात 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का प्रस्तुति रमेश गोखले दिन में 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे अभिनेता शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत संपादन सहयोग रीमा जोशी प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग 12:05 पर यादों की महफिल बजे सुरीला सफर 2:30 पर सदाबहार नग में 3 कार्यक्रम सखी सहेली प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक 4 पिटारा में सुने आज के मेहमान साहित्यकार लेखक मनोज रूपड़ा से ममता सिंह की बातचीत संपादन सहयोग रीमा जोशी प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण 5:30 पर तराने नए पुराने हमारा दैनिक कार्यक्रम पर संध्या रजन 7 जयमाला 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग रात 8 हवा महल में सुनिए प्रहसन महीने की आखिरी तारीख लेखन एस आई इशरत और निर्देशन मुख्तार अहमद पर चित्रलोक 9 आपके लिए रात 10 छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 327।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसल कर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानि से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

0: संगीत सरिता।
1: नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है विविध भारती के खजाने से। आज हम एक ऐसी भेंट वार्ता चुन लाए हैं, मतलब वर्ष 1985 की संगीत सरिता की उद्घोषणाओं के साथ सुनते हैं ये बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: ये विविध भारती आज संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक श्री अरविंद गजेंद्र गढ़कर से ली गई भेंट वार्ता सुनिए। भेंट कर रहे हैं के शैलेंद्र।

0: श्रोताओं, आपने इस तार वाद्य की झनकार सुनी और उसके साथ साथ वंशी की मधुर आवाज पेंगे लगा रही थी। जाहिर है आज हम एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवा रहे हैं जिनका इन दोनों साजों से विशेष संबंध है। ये जो तार वाद्य था स्वरमंडल और वंशी तो आप जानते ही हैं, और ये कलाकार कलाकार नहीं बल्कि हम इन्हें साधक कहेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, संगीत साहित्य और शिक्षा की त्रिवेणी जिसके जीवन को निखारती पखारती रही है, वो कलाकार आज आपके बीच होंगे और उनका नाम है अरविंद गजेंद्र गडकर। आइए अरविंद जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: अरविंद भाई जी। सबसे पहले जी, श्रोताओं को हम आपके स्वरमंडल के बारे में ही कुछ बताएं, आप इन्हें बताइए।
1: बात ऐसी है कि स्वरमंडल तो ये संगत का साज है, सब जानते हैं, गाने वाले संगत के लिए इस साज को इस्तेमाल करते हैं।
0: लेकिन हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है
1: जी,
0: आपने इसे एक नया आयाम दिया है
1: जी। हाँ।
0: आपने इसे नए ढंग से सोलो में प्रयोग में लाया है आप, तो उसके बारे में आप बताइए ना कुछ।
1: बात ऐसी हुई कि 30 साल पहले मैंने जब इस साज को सुना, ऐसे ही छेड़ते, बड़े गुलाम अली खान साहब छेड़ते थे इसको, तो मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियलिटीज इतनी है कि क्यों नहीं इसको डेवलप किया जाए कि एक स्वतंत्र रूप में, सोलो के रूप में। तो मैं इसके पीछे पड़ा, तो फिर पहले तो चलते रहा कि इस पे बजाए क्या, आखिर एक बार छेड़ दिया तो खत्म हो गया, फिर क्या करें आगे। तो मैंने सोचा कि दोनों हाथ पियानो की तरह अलग अलग चलाएं। देखिए ऐसे, देखिए ये हाथ।

0: कैसा लगा?
1: इतने सारे तारों को नियंत्रित ढंग से एक उंगली के कमाल से बजा कर रखना। अच्छा, इसमें तार कितने होते हैं?
0: 36।
1: अच्छा,
0: अब इस पे तो मीन निकल नहीं सकती।
1: हाँ,
0: तो इस पर हमने प्रयास किया है कि मीन निकाले। देखिए, प्रयास है, हाँ, प्रयोग है।
1: वाह, आपने इसमें सितार का भी सम्मिश्रण कर दिया।
0: जी हाँ।
1: वाह। अच्छा, ये एक बात श्रोताओं को हम जरूर बताना चाहेंगे कि आपकी रुचि संगीत में कैसे हुई शुरू से?
0: बात ऐसे, वो तो एक इत्तेफाक की बात है ना, एक्सीडेंट था वो, कि मैं भोसला मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था
1: जी,
0: और वहाँ बैंड मास्टर जो हमारे थे वो एक बैंड पर धुन बिठा रहे थे, और तो दिन क्या हुआ कि वो बंसी बजाने वाला जो लड़का था वो आया ही नहीं, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि तू बजाएगा जरूर। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा तुझ में वो गुण है, संगीत की कुछ रुचि है तू, और तुम्हें गिफ्ट है, तो ये बंसी ले लो और घर जाके रियाज करो और कल जा आके ये धुन बजा।
1: अच्छा, तो सबसे पहले मतलब वंशी से शुरुआत की?
0: जी हाँ।
1: और वंशी के बाद फिर तब आपने स्वरमंडल?
0: स्वरमंडल तो मैं 31 साल है, वंशी तो मेरे बचपन से, यानी समझे कि 47 साल से मैं बंसी बजा रहा हूँ।
1: अच्छा
0: जी हाँ। और शुरू में तो यहाँ जो DML ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे, दिनकर राव अम्बल, उनके स्टाइल में कॉपी करता था। उसके बाद पन्ना बाबू, पन्ना लाल जी घोष, उनसे थोड़ा सा सीखा, और मेरे असली गुरु तो मथुरा के मुरलीधर शास्त्री हैं।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझे संगीत में कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी दोनों का मुझे ज्ञान दिया।
1: मतलब संगीत का सफर आपका काफी पुराना है।
0: जी हाँ,
1: बचपन से आप इसमें साधना करते रहे हैं।
0: जी हाँ, जी।
1: अच्छा, एक और बात
0: जी,
1: कि आप शिक्षा में भी डिग्रियां काफी हैं आपको, और वो भी कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जिनका विशेष रूप से लोग कहते हैं संगीत के साथ सामंजस्य नहीं होता, जैसे आप साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, तो ये सारी डिग्रियां और उसके साथ साथ संगीत की साधना, ये दोनों का मेल कैसे कर पाए आप?
0: अब देखिए, मैं फिजिक्स के तरफ आकर्षित हुआ कि साउंड जानने के लिए, कि म्यूजिक तो साउंड की दुनिया है,
1: मतलब संगीत में भी जो विज्ञान का पक्ष है।
0: हाँ, तो फिर उसके बाद आपके मानसिक स्तर पर उसका परिणाम होता है, तो साइकोलॉजी में हमने एमए कर दिया। फिर पढ़ाना अच्छा चाहिए, तो इसलिए मैंने एजुकेशन की एक डिग्री ले ली, कि चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी करके बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो गए।
1: मतलब संगीत का मंथन आपने हर तरह से करने की कोशिश की, ताकि उसमें से जितने भी रत्न निकाले जा सकते हैं वो कर लिया जाए। अच्छा, जब इतनी सारी विधाएं और इतने सारे पक्षों में आप बटे हुए हैं, तो संगीत के लिए रियाज का वक्त कैसे निकालते हैं?
0: देखिए, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं अपने को
1: जी,
0: है ना, उसमें से 8 घंटा आप रेस्ट लें और कुछ करें, 16 घंटे तो पड़े हैं। अगर हर मिनट आप अगर उसके तरफ लगाएं, आपकी जो चीज है, तो आपको बहुत कुछ आ सकता है।
1: अच्छा, और संगीत रचना में
0: जी,
1: तो जाहिर है कि आपने काफी योगदान दिया होगा।
0: जी हाँ,
1: तो उस बारे में कुछ बताइए।
0: ऑल इंडिया रेडियो में मैं प्रोड्यूसर था।
1: अच्छा।
0: तो फिर लाइट म्यूजिक और क्लासिकल दोनों देखता था, तो फिर वहाँ ऑपेराज करना, संगीत रूपक करना, फिर हर महीने का गीत, ये सब मैं करता था।
1: काफी वर्षों तक आपने आकाशवाणी में भी सेवा की है।
0: 20 साल, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आकाशवाणी की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखना मुझे।
1: अच्छा, ये संगीत के साथ साहित्य एक और पक्ष है जिसमें भी काफी लोकप्रिय है आप, और आपने काफी उसमें नाम भी पाया है।
0: मैंने
1: तो साहित्य को आप अपने संगीत से और विज्ञान से कैसे?
0: क्या हुआ कि जब संगीत मेरा प्रोफेशन बन गया तो कुछ आउटलेट मुझे चाहिए था एनर्जी को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ह्यूमरस स्टोरीज पहले

0: लिखता रहा
1: जी।
0: फिर संगीत समीक्षा, फिर किसी ने कहा कि आप नॉवेल लिख के देखिए, तो वो भी लिखी, तो 10 नॉवेल्स लिख दी मैंने और आजकल एक बड़े नॉवेल पे मैं काम कर रहा हूँ।
1: अच्छा, संगीत से संबंधित कोई किताब आपने लिखी?
0: जी हाँ, स्वरांचा बनात, वो बड़ी, हाँ बड़ी अच्छी किताब,
1: मराठी में।
0: जी हाँ, वो लोगों को बहुत पसंद आई।
1: अच्छा, आप तो देश के अलावा विदेशों में भी काफी भ्रमण कर चुके हैं, तो क्या कुछ विदेशों की अपनी अनुभूति बताइए।
0: हाँ जी, टोक्यो यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया टॉक्स के लिए, हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन म्यूजिक, तो वहाँ मैं गया था। तो फिर मैंने कहा कि फिर चलो हांगकांग चलें, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह वगैरह, तो बहुत से देश घूम के आया। तो मैंने ये देखा कि स्वरमंडल और बंसी दोनों का वहाँ बहुत प्रभाव।
1: अच्छा, विदेश में लोग काफी पसंद करते हैं इसको।
0: और स्पेशली स्वरमंडल तो बहुत ही लोगों को पसंद आता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ, शुक्रिया।
1: अच्छा, अब श्रोताओं को कुछ सुनाए।
0: जरूर सुनिए।

0: वाह, अच्छा तो हम श्रोताओं से विदा लें और पहले हम श्रोताओं की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद।
2: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक अरविंद गजेंद्र गडकर से भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रहे थे के शैलेंद्र।
3: और अब सुनते हैं अरविंद गजेंद्र गडकर की बांसुरी पर बजाई।

बांसुरी पर पहाड़ी धुन आप सुन रहे थे। कलाकार थे अरविंद गजेंद्र गढ़कर। आज विविध भारती के खजाने से हम ले आए थे उनके साथ की गई के शैलेंद्र की बातचीत। और अब इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हम तैयारियां इतनी मजबूत कर लें कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में

0: नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहूर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल बोन ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। विशेष शिविरों का अगला दौर अगले महीने की 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक सुनवाई की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे SIR अभियान के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi, Mr. Singh said that the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent. The minister

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रदेश कैबिनेट ने 24,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को दी मंजूरी। अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर, भोपाल में गोपालक सम्मेलन में होंगे शामिल। और इंदौर, भोपाल और उज्जैन को केंद्र सरकार की प्रगति 50 पहल के तहत देश के 50 मॉडल शहरों में शामिल किया गया। अब समाचार विस्तार से। एशियाई गेम्स में महिलाओं की ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 दशक से ज्यादा समय बाद इस स्पर्धा में भारत को पदक मिला है, जो यादगार उपलब्धि है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का क्षण बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बड़ी राशि मंजूर हुई, जिसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए अगले 5 साल में 5,329 करोड़ और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,245 करोड़ से ज्यादा राशि शामिल है। वहीं युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
1: अग्निवीरों को आरक्षण देकर के युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसमें वन विभाग के आरक्षक, इसके अलावा गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल के प्रहरी तथा आबकारी के आरक्षक, इन 5ों विभागों में 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह एक मध्यप्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत है और मैं ऐसा मानता हूं कि यह युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होने के साथ वे न्याय संहिता पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद भौरी के पास IISER परिसर का शिलान्यास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी प्लांट सहित दुग्ध संयंत्र और गुणवत्ता जांच लैब जैसी कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान 2026 को प्रदेश में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कल अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे भी रचनात्मक कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश दिए। अभियान के तहत अब तक 3,87,00,000 से ज्यादा दीप जलाए गए हैं, जबकि चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु, 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा और 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरों के नशे के हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाने और हर जिले में हर महीने नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और आबकारी विभाग को जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के तहत कल मतदान संपन्न हुआ। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 75.96% और पंचायत उपचुनाव में 56.62% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश में 4,235 पदों पर उपचुनाव होना था, जिनमें से 604 पदों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष, 4 पंच और 79 सरपंच और 5 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ। इन चुनावों की मतगणना 3 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि पंच और जिला पंचायत सदस्य के नतीजे 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके नजदीक ही दिलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सेवा शिविर लगेंगे। इन शिविरों में राजस्व सेवाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन को केंद्र सरकार की प्रगति 50 पहल के तहत मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इन शहरों में स्वच्छता, सैनिटेशन और ठोस तरल कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तीनों शहरों के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में काम किया जाएगा। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ को देखते हुए क्षिप्रा नदी, घाटों और सार्वजनिक सुविधाओं की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रहेगा। नई दिल्ली में YouTube इम्पैक्ट समिट में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने क्रिएटर इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि AI रचनाकारों का विकल्प नहीं बल्कि उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने का साधन बनना चाहिए और इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। श्री मुरुगन ने युवा रचनाकारों से भारतीय भाषाओं, संस्कृति और कहानियों को डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने की भी अपील की। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश नारंग ने मध्य प्रदेश बीज संघ को अमूल, इफको और क्रिबको की तर्ज पर मजबूत सहकारी संस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 5 साल में बीज संघ को देश के प्रमुख बीज संस्थानों में शामिल करने के लिए उत्पादन, अनुसंधान, तकनीक और मार्केटिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की हर विधानसभा में अब सीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे जहां बच्चों और युवाओं को कई खेलों के साथ फिटनेस और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी मिलेंगी। एशियन गेम्स में प्रदेश की राज्य शूटिंग अकादमी की नीरू डाडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियन रिकॉर्ड बनाया और इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। वहीं राज्य एथलेटिक्स अकादमी के देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 5.50 मीटर की छलांग लगाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। हालांकि वे 7वें स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा में कुलदीप कुमार 5.35 मीटर के साथ 10वें स्थान पर रहे। और अब बात मौसम की। प्रदेश से इसी हफ्ते मॉनसून की विदाई शुरू होने वाली है। सबसे पहले उज्जैन और ग्वालियर संभाग से मॉनसून लौटेगा। इसके बाद इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग से भी इसकी वापसी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। वहीं 3 अक्टूबर तक प्रदेश से बारिश के बादल पूरी तरह छट जाएंगे। आपको समाचार संक्षेप में। वडनगर से वाराणसी जा रही सेवा संकल्प यात्रा के तहत मंडला पहुंचे बाइकर्स यात्रा का ग्राम चारकी में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई। कटनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल निर्वाचन सदन पहुंचकर ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय शिवपुरी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में साइन लैंग्वेज वीक के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा EDR सेंटर में अनुगूंज से उद्घोष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने कल सुबह खंडवा रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया। धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में कल जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा साइन लैंग्वेज वीक के अवसर पर अनुगूंज से उद्घोष विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज तेरे द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुनिए पवन पुत्र फिल्म का गाना आवाज शमशाद बेगम की और साथियों की। गीतकार थे दीपक और संगीतकार दीपक और संगीत चित्रगुप्त का।

दोस्तों विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को आपकी दोस्त मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का जन्मदिन है। आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं को याद कर रहे हैं उन्हीं के फिल्मों के माध्यम से। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गाना।

अभी आपने सुना फिल्म छाया का गीत, गीत के बोल थे राजेंद्र कृष्ण के, संगीत सलील चौधरी का और युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आपने सुना बुड्ढा मिल गया का गाना युगल स्वर थे आशा भोसले और किशोर कुमार के, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत राहुल देव बर्मन का। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म अभिमान से लिया है हमने, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, स्वरबद्ध किया मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम हिराही प्यार के इस कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अंतराल का।

अभी आपने सुना फिल्म चिपके चिपके का गाना, युगल स्वर थे लता मंगेशकर और मुकेश के, गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने।

अभी आपने सुना गबन फिल्म का गीत, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत की बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए फिल्म प्यार का सपना का गाना, युगल सर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार चित्रगुप्त।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक

0: बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक सौनी योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते, इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर

0: स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
1: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली
2: और का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरिंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@arnewshindi को फॉलो करें और कोई भी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना के कश्मीर स्थित चिनार कोर में मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा बेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत में हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरल, माही, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्र की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुगरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट की। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी नवीन कोर्स में शामिल।

0: पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्ध थ्रूप शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाइंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त मंजरी वर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी जीने का अंदाज ऐसा हो कि हर दिन मुस्कुराने की कोई वजह मिले, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और उनके लिए आभारी रहे। बीते कल की चिंता और आने वाले कल का डर छोड़कर आज को खूबसूरती से जिए, क्योंकि जिंदगी वही खूबसूरत है जिसे हम खुशी, उम्मीद और सुकून के साथ जीते हैं। तो आइए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: फिल्म पीके का गाना आपने सुना, शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत शांतनु मोइत्रा का।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
5: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
4: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
6: अगर तुम मिल जाओ।
4: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
7: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: दोस्तों, आज हम लोकप्रिय गायक शान को उनके जन्मदिन पर विविध भारती परिवार की ओर से बधाई दे रहे हैं। शान ने पॉप संगीत से लेकर हिंदी फिल्मों के गीतों तक अपनी अलग पहचान बनाई और बड़ी सुरीली और मधुर आवाज में उनके गीत हम सुनते आए हैं। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना।

0: ये था गाना फिल्म चल पिक्चर बनाती है का, जिसे गाया शान और सुनिधि चौहान ने, गीत के बोल लिखे सीमा ने और संगीत दिया गौरव ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: कार्यक्रम चल रहा है चित्र लोग। अभी आपने सुना था फिल्म सनम रे का गाना, और इसे गाया था शान ने, और गीत लिखा मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया जीत गांगुली ने।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: एक विलक्षण गायक।
6: अरे ओरे हे।
5: संगीत के साधक।
6: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
6: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
5: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
7: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
5: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनिए अगला गाना, किसी का भाई किसी की जान फिल्म से हमने लिया है। गायक कमाल खान, पलक मुछाल, और गीत रचना शब्बीर अहमद की, और संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: लीजिए सुनिए अब अजब गजब लव का गाना। मोहम्मद इरफान और अंतरा मित्रा की आवाजों में गीत लिखा कौसर मुनीर ने और संगीत साजिद वाजिद का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बता दें आज आपको कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी है और ये हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचता है। ये साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और कला को दुनिया भर में जोड़ने का काम करता है। अनुवादक अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल की तरह होते हैं। ये दिवस उनके मेहनत और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का एक अवसर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म बागी 3 का गाना, जिसे गाया रोचक और शान ने, गीतकार गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा, संगीत रोचक कोहली का।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
5: अगर तुम मिल जाओ,
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
6: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
7: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
4: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनिए फिल्म सिंग इज ब्लिंग का गाना। आवाज दी है मंज मुशिक और साशा ने, गीतकार मनोज मुशिक और रफ्तार और बिग ढिल्लन, संगीत मंज मुशिक का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

0: सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक और आइए सुनते हैं अगला गाना फिल्म जेवरिया जोड़ी का आवाज यासिर देसाई और अल्तमश फरीदी के गीतकार रश्मि विराग संगीत तनिष बागजी का

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
6: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
7: विविध भारती से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चित लोग। आइए सुनिए अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म दिल तो बच्चा है जी का गाना, आवाज मोहित चौहान की, गीतकार नीलेश मिश्रा और संगीतकार प्रीतम का।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
6: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
5: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
5: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी का दिन शुभ मंगल हो। आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: इस नए दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषिदा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषिदा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहाँ आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। यह फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। सो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषि दा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषि दा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

ऋषि दा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: रिशिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में रिशिदा का जो योगदान रहा है उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने रिशिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में रिशिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन हो।

0: कभी तो हंसाए कभी बेगुनाह।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: कार्यक्रम होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट से लेके चिट्ठी, आलेख श्रीनिवास चौधरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात एक खास यात्रा की। वडनगर से वाराणसी जल जन और सेवा संकल्प यात्रा 28 सितंबर को बैहर पहुंची। यहां यात्रियों ने सफाई कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों से हिंसा प्रभावित लोगों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि हालात में बदलाव के बाद अब गांवों में सुरक्षा के साथ विकास और सुविधाओं का विस्तार भी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मनाजगढ़ नगर पालिका ने सेवा संकल्प अभियान और सफाई मित्र सुरक्षा पहल के तहत सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। इसमें रक्तचाप, शुगर और हीमोग्लोबिन समेत सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरवासियों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में हुई 25वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में बालाघाट के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 5 पदक अपने नाम किए। कलेक्टर कुमार सत्यम ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी सेहत की सराहना की। अब किसानों से जुड़ी खबर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए किसान पंजीयन 15 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। जिले में इसके लिए 112 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। किसान सीएससी क्योस्क, एमपी ऑनलाइन और साइबर कैफे के जरिए ₹50 शुल्क देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए लांजी के भोले गांव में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर लगाया गया। यहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और आवेदनों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी पहल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 14 से 15 साल की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है। बालाघाट अर्बन क्षेत्र के फोकल पॉइंट पर भी बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। और अब बात विकास कार्यों की। बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी ने किन्नापुर के देवगांव में करीब 77 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जांच और सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर लगाया गया। 355 छात्राओं की सामान्य स्वास्थ्य हीमोग्लोबिन जांच हुई, जबकि 155 छात्राओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई। इनमें 35 छात्राएं सिकल सेल ट्रेट पॉजिटिव मिली, जिन्हें आगे की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस पर बालाघाट में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सुरक्षित गर्भपात से जुड़े कानूनी प्रावधान, निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गई। अब बात सरकार आपके द्वार की। बालाघाट में 3 अक्टूबर को विकासखंड स्तर और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में मेगा सेवा सेतु शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के साथ राजस्व से जुड़ी सेवाओं के मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। बिरसा के बैगा, बहुल गांव और दुल्हापुर में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर ग्रामीणों को गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में जाति प्रमाण पत्र के 90 आवेदन मिले और पहले से तैयार 175 प्रमाण पत्र बांटे गए। इसके अलावा 26 नया आधार कार्ड बनाए गए, 28 अपडेट किए गए और संबल समेत पेंशन और राशन से जुड़े आवेदन भी लिए गए। ग्रामीण इलाकों में साफ पानी पहुंचाने के लिए भी काम जारी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम ने बिरसा और बैहर के कई गांवों में हैंडपंपों का क्लोरिनेशन और जरूरी सुधार किया। अब पंचायत चुनाव की खबर। बालाघाट की 3 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए हुए मतदान में कुल 62.48% वोटिंग हुई। भरवेली में 55.31, खुरपुड़ी में 89.39 और अकोड़ी में 71.73% मतदान दर्ज किया गया। इन चुनावों के नतीजों के लिए मतगणना 3 अक्टूबर को संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर होगी। और आखिर में बात खेती किसानी में हो रहे शोध की। राजा भोज कृषि महाविद्यालय में देश विदेश के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान परियोजना का निरीक्षण किया। IRIR फिलीपींस और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल अनुसंधान प्रक्षेत्र में चल रहे काम को देखा। इस दौरान फसल विविधीकरण और नई कृषि तकनीकों को लेकर भी चर्चा हुई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख था श्रीनिवास चौधरी का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: से कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे
2: पर फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर
1: हाँ,
2: बचपन से
1: वो देखा था तो उस वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही उनकी वजह से हूँ।
2: जी जी जी उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम ऐसे चिन्ह नजर आए?
1: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
2: अच्छा।
1: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था। हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको ट्रॉम्बे में, बहुत दूर। जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था, अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहां पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा मैं डरा तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग बोल के उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है। तो मतलब मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला अरे ये अच्छा एक्टर है। लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा। अब हीरो वाली तो पर्सनालिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है।
2: नहीं, आप जो हैं जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
1: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर SSC बोर्ड में था और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, BA किया, और दो साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था
2: जी।
1: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम। वहाँ काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
2: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
1: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना स्कूल में मैं कुछ कर पाया। इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में उन्होंने भी एंट्री मारी थी।
2: अच्छा।
1: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया। फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
2: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। हाँ, उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
1: मेरी पसंद का कोई गीत? यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर।
2: अच्छा।
1: गमन से
2: थोड़ा सा गुनगुना देंगे?
1: अरे वो तो

0: क्या बात है, सुनवाते हैं गीत
1: अभी से। मैं ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं नहीं, हर गीत पे हम नहीं गवाएंगे आपको, अगर आप ऐसा चाहेंगे तो।
1: हाँ, कि बच्चे के बोलते हैं कि महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं महाराष्ट्र, उसकी स्पेलिंग बताओ। नहीं, मैं गोवा में रहता हूँ।
0: नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए,
1: मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो हाँ, उससे पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने अच्छा, मेरा पहला काम जो
0: पहला
1: है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में रांची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नब कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया और मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और उस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिम्पल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मजा आया था, मेरा पहला काम था वो और काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है?
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफी काम की तलाश चली और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा योगदान है, तो उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो उस तरफ बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था राजश्री प्रोडक्शंस में, वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स खत्म होते थे तो मैं शाम को वहां पहुंचता था, हम गप्पे उप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे
0: जी।
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया तो और बोला यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफी अच्छी कमांड है। तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी, उसमें उस वक्त वीजे थी वो उस वक्त एमटीवी में, तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स वीजे लिंक्स जो होते हैं कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ETC, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल 2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया
0: जी।
1: फिर नौकरी की मैंने MTV में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे और फिर 1 साल चैनल V में था, तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी, मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज। तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई, बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो MTV के जो 4 साल थे वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मैंने वहां पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ जिनके साथ
0: जी।
1: तो वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं MTV में।
0: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया।
0: किसी भी क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए ओए तेरी तिरछी नजरिया
3: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया

0: गोरी ओ गोरी बड़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले सावरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया।

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फेहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था, 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था। और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई

0: जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते हैं, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा कुछ वो नहीं था उस ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते तो बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं वो,
1: बिल्कुल,
0: वो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ, इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था
1: जी,
0: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर, फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैंने बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए,
1: अच्छा।
0: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने, मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ, मतलब मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा, मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता हूँ
1: और जब तक है जहाँ उससे भी आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना हुआ?
0: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले, एक ऐड किया था एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था
1: जी।
0: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी एक चैनल था UTV बिंदास, वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज AVP प्रोग्रामिंग, और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया
1: अच्छा।
0: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो, तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो YouTube पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके सीन्स के साथ ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ, उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो मैं प्ले करने वाला था उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था,
1: अच्छा।
0: उस वक्त वो शानू की असिस्टेंट थी,
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
1: मौका
0: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था और ऑडिशन देके आ जाता था, तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है, तो मुझे लगा ठीक है अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है एक बार और ले लो तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में ही, और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया, तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है,
1: अच्छा,
0: 2 दिन
1: उसी
0: बाद
1: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था,
0: हाँ सेम रोल का ही मैंने इतनी बार ऑडिशन लिया, और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग, दोनों शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था,
1: वो कुछ अलग,
0: और मैं उस वक्त एकदम ऐसा था 90 किलो का
1: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशन, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार बार राउंड देने पड़ते हैं?
0: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म,
1: अच्छा।
0: में ऑडिशंस के, अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत जरूरत

0: प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना कहीं, बहुत सारे, तो कैसा महसूस हुआ या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आपकी, नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं आगे और कोशिश करेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया, वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है हम सब इसमें तुम्हारे साथ में हैं, तो वही और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है बस जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा
0: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट वो नजर आया फिल्मिस्तान
1: जी
0: फिल्म में,
1: हाँ।
0: तो वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने, उसमें डायलॉग भी है ये कि मेरा जन्म ही
1: लिखे हैं फिल्म,
0: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है, तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे
1: फिल्मिस्तान? मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे, उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की, तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है बहुत सही है, ज्यादातर वो सब अच्छा ही होता था, नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है, फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया, तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान किया, तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई, जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल जाता है,
1: वो मिल जाता है, तो वही हुआ मेरे साथ में और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आपके पसंद का गीत
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोरा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी है।
0: डायलॉग भी आपने लिखे हैं?
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो परफॉर्म करने में जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे में बच्चों की तरह नाचता था
0: जो कि हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था, पूरा एंटरटेनमेंट। और वो डायलॉग भी है उसमें कि
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। और जब मैं लोगों को हंसाता हूं तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म किया और उसमें भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा,
1: हाँ,
0: उन्हीं के साथ काम किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और कैसा ये अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग। तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार, मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ, और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें, और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी, यानी वो भी नहीं पता, लेकिन

0: अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ।
0: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम सिंह चार्ली का हूँ। एक खूबसूरत फिल्म है। और यस
1: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
0: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है। मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं
1: जी,
0: वही रचा बसा है।
1: काफी रिलेट कर पाते हैं।
0: हाँ टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो किया है,
1: मेहरूनी की बात करता है, हाँ, बिल्कुल,
0: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी जी जी जी।
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है। और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक वो हाँ मिडिल क्लास वाला,
1: और दर्शकों से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो आ जाता है।
0: हाँ।
1: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
1: बिल्कुल
0: इतना यकीन
1: वो सुनवा देते हैं, वो गीत हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या ख़त्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफ़ी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी ताकत रही
1: जी हाँ, वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं, और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता. और जब मतलब चीजें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया था.
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन.
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी. बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर ख़त्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के ज़रिए, जब तक है जान के ज़रिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था. उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था. तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें करो, कोई बंगाली एक्सेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं. और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है. आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब घंटी बजेगी. और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फोन आया. और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे. नेचुरली आपको कौन सा डायलेक्ट जो है आप में मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल हैं. तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ. तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको. फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब. तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शन मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे. फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया. और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है
0: जी।
1: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन वन और वो ओटीटी पर, मतलब एक एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे,
0: बिल्कुल।
1: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीजन टू आया और रिस्पांस जो है वो डबल हो गया, तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया, स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया
0: जी।
1: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई और मतलब वो मेरी जिंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
0: बिल्कुल।
1: फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
0: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है। तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
1: नहीं नहीं, लिखी हुई होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा, और सुमन कुमार जो है वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे, तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, लेकिन राज एंड डीके जो है ना,
0: हाँ
1: वो कभी कट नहीं करते हैं, जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते, और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
0: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है।
1: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है, उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोस पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में, और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की। राजेंद्री के बहुत हमें मतलब आजादी देते हैं, जहां पे हम कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राज एंड डीके हैं और मैं जेके बनूंगा और मजेदार कुछ कमाल करेंगे, और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट होता है। तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर रहा हूँ।
0: हमें भी इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें।
1: थैंक यू।
0: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है? स्टंट्स आप करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर?
1: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते हैं। और वो कोई बोलता भी नहीं है कि आप करो, अगर डिफिकल्ट होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं, और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है तो वो वहां पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है और उसके बाद में फिर आप भी ग्रुप में आ जाते हैं,
0: यूज्ड टू हो जाते हैं।
1: कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था और वही तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया फिर वहां से जमीन पे गिरा, लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है।
0: बिल्कुल।
1: तो वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे तो नहीं है।
0: और हैवान में आपका किरदार अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से, कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से?
1: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ।
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया, सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
0: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनाना चाहते हैं?
1: किशोरदा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा योडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लक्षा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन क्योंकि जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है, यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए। कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया। काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर गेम में है ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं इसको
0: कमाल हो जाएगा
1: बहुत। हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है तो मुझे पता है लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जैसे बोलते हैं मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ, दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ, कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही आपको,
1: फिल्में बहुत पसंद है
0: जी,
1: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ और बहुत मजा आया बातचीत करके।
1: थैंक यू।
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी, और आप बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में, जी मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं वहां बैठा हूं और आपसे बात करूं तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हो चुका कताए ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। कार्यक्रम का आगाज बेगम अख्तर की आवाज में सुनकर ये गजल। कलाम है उस्ताद शायर दाग दहलवी का, तर्ज है खयाम की।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। गायक और संगीतकार हरिहरन की आवाज में समाप्त कीजिए खुमार बारा बनकवी का ये कलाम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए तलत अजीज की आवाज में, मौसकी है फिदा हुसैन की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: धनक घटा कलिया और तारी हैं तेरे रूप, गजलें हो या गीत मेरे सब में तेरा रूप। कार्यक्रम की अगली गजल आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में, शायर हैं कतील शिफाई।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह

साथियों, कार्यक्रम की अगली गैर फिल्मी रचना सुनिए गायक और संगीतकार लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अनामिका की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है राजीव आनंद ने, संगीत है एडविन फर्नांडिस का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: कार्यक्रम में अगली आवाज है अदनान समी की, गीतकार है समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला एल्बम सॉन्ग है अलीशा चिनॉय की आवाज में। गीत है शाम अनुरागी का, संगीत है बिद्दू का, एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं ललित सेन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है शोभा मोदगल की आवाज में। गीतकार है अनिल पांडे, संगीत है संदेश शांडल्य का, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में दो और निशानेबाजी में एक स्वर्ण सहित कुल तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचांग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने कक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, आज यादों की ये महफिल सजी है मशहूर पार्श्व गायक शांतनु मुखर्जी यानी के शान के शानदार गीतों से। आज उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार और आप सभी की तरफ से हम उन्हें देते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। गीतकार है समीर अंजान, संगीत है मोंटी शर्मा का और फिल्म का नाम है सांवरिया।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए सुनिए अगला गीत शान और कैलाश खेर की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है फना।

गायक शांतनु मुखर्जी 30 सितंबर 1972 को खंडवा एमपी में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी एक जाने माने गीतकार थे और पिता मानस मुखर्जी एक मशहूर संगीत निर्देशक थे और उनकी बहन सागरिका भी एक बेहतरीन गायिका है। साथियों, संगीत के माहौल में पले बड़े शान ने मात्र 4 साल की उम्र से विज्ञापन गीत यानी जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था और उनके एल्बम तन्हा दिल और भूल जा बहुत हिट हुए थे। हिंदी के अलावा शान ने मराठी, बंगाली, उर्दू, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में भी गीत गाए हैं। उन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शोज को भी होस्ट किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में अगला गीत। साथ में है सुनिधि चौहान भी, नगमा निगार है जावेद अख्तर, धुन है विशाल शेखर की, फिल्म का नाम है तारा रंपम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ

0: प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, गायक शान को अपने शानदार गायन के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार और कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शान और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है निखिल विनय का और फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला गीत सुनिए शान और श्रिया घोषाल की आवाजों में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, तर्ज है नदीम श्रावण की, फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, अगला गीत है शान और श्वेता पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लोए और फिल्म का नाम है नई पड़ोसन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम का अगला शानदार गीत है शान और श्रेया घोषाल की मिली जुली आवाजों में। गीत रचना सुआनंद किरकिरे की, संगीत है शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम है पीके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अगला गीत सुनिए शान की आवाज में। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है झनकार बीट्स।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में. गीतकार हैं अरुण भैरव, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड.

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आज यादों की महफिल सजी थी मशहूर गायक शान के शानदार गीतों से। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हमसफर चलने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको याद दिला दे क्या है आज की इबारत। उसके दामन की खुशबू, उसके कदमों की आहट फजाओं में है, तो भी देखो ना मन नहीं जागे पीछे सपनों के भागे। और जिया में चमके जैसे कोई अंगारा, कुछ ना पूछो दिल का हाल बुरा होता है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं तो सीने में क्यों झनकार हुई। दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं प्रेम की पुकारी, ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। चाहत का है हर सू असर, चलती हूं मैं तारों पर, और उसका बस चले तो वो दौड़ के आएगा। ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, अपने संदेश आसान सरल भाषा और कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें। वैसे आपको पता है आज की खास बात ये है कि जो हम आपसे पूछना चाहते थे वो ज्यादातर बातें आप पहले ही लिख चुके हैं, पर हम फिर भी आपसे पूछते रहेंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज का ये सुरीला सफर हम तय करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को याद करते हुए और उनकी फिल्मों के गीतों को सुनते हुए। 30 सितंबर 1922 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उन्हें हिंदी फिल्मों में मिडल ऑफ द रोड माना जाता था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और कुछ समय तक गणित और विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन भी किया था। उन्हें प्यार से ऋषिदा कहा जाता है और इसके आगे की बातें अब आप हमें बताएंगे। तो साथियों, आज बातें होंगी ऋषिदा की फिल्मों की। उनकी फिल्मों की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, उनकी फिल्मों के नाम हमें बताएं और ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों से क्या मैसेज देते थे हमें वो भी बताएं, और उनकी फिल्मों में जो कॉमन सिचुएशन दिखाई जाती थी, जो हास्य की जो सिचुएशन होती थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ था वो भी बताएं। और ऋषिदा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म कौन सी थी और भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, और ये भी बताएं कि इस वक्त आपको ऋषिदा की कौन सी फिल्में और गीत याद आ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम में हम और आगे बढ़ जाते हैं। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, ऋषिदा की फिल्मों की खासियत और उनकी फिल्मों के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित क्लासिक हिंदी फिल्म अनुपमा एक शांत गहरे भावनात्मक जुड़ाव और पिता पुत्री के रिश्तों की कहानी, तो हमें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी लिखकर भेज दें और इस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला था वो भी बता दें, और इस गीत में आवाज गीत संगीत किसका है वो भी बता दें, और साथ में ये भी बताएं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसको लिखा है मशहूर शायर कैफी आजमी ने। बाकी चीजें तो आप हमें बताने वाले हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खिंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

साथियों आपके जवाब हमें मिल गए हैं जो इस तरह से हैं धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर तरुण बोस शशिकला देवन वर्मा और सुरेखा पंडित इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था और इस गीत को लिखा था मशहूर शायर कैफी आजमी ने संगीत था हेमंत कुमार का और आवाज थी लता मंगेशकर की फिल्म का नाम था अनुपमा और अब पढ़ लेते हैं हमारे साथियों के कुछ संदेश संदेशी हमारे एक साथी ने इबारत पढ़ के लिखा है कि दामन के दाग मिटाए जा सकते हैं मगर दिल के जख्मी दागों को नहीं मिटाया जा सकता। दिलरुबा के दीदार के लिए दिलबर की हालत का अंदाजा एक दिल वाला ही लगा सकता है। दर्द भरे नगमों के जरिए के दरिया में बहने के लिए हमारा दिल भी बेकरार है। और एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जिंदगी बहुत अपनी सी लगती है, कहीं रिश्तों की मिठास, कहीं दोस्ती, कहीं हंसी और कहीं आंखों की नमी, कहीं आंखों को नम कर देने वाली संवेदनाएं। उनकी सादगी भरी कहानियां हमें हंसाते हुए भी जीवन का थोड़ा और करीब जीवन को थोड़ा और करीब से समझा देती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में और उनके गीत आज भी दिल में बसे हुए हैं। एक और संदेश है कि ऋषिदा की फिल्में पारिवारिक बातों पर, मध्यम वर्गीय लोगों की आम समस्याओं पर बनी थी। उनमें प्रेम की भावना समान था। एक साफ सुथरी फिल्म रहती थी जो परिवार से सब लोग बैठ के देखें तो भी संकोच नहीं होता था। और ये अगला संदेशा है कि रात कली जब ख्वाब में आने लगे तो समझिए धीरे धीरे दिल मचलता जरूर है, जो प्रेम की शुरुआती दस्तक और सपनों के एहसास नजर आ रहे हैं। जिंदगी में प्यार के रास्ते में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी कभी कोई पल ऐसे भी हो सकते हैं जहां लम्हे खो जाते हैं, जब जिस वक्त यार जुदा हो तो तब दिल कहता है कि तेरा मेरा प्यार अमर है, इसलिए हम अब के सावन में जरूर मिलेंगे। और एक मित्र ने लिखा है कि तेरे प्यार के दामन में ही लिपटे हैं हम, छोड़कर तुम्हें अब कहां जाएं हम, तेरी चाहत में इस तरह डूबे हैं हम, डर है कि खुशी से कहीं मर ना जाएं हम। क्या बात है। और ये एक अलग मैसेज है कि मन तो भागता ही है सपनों के आगे, लेकिन हमें प्रेम से दो दिलों के बीच की दीवारों को हटाना होगा। और ऋषिदा को सादर नमन। साथियों मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 में बनी क्लासिक फिल्म आनंद एक ऐसे जिंदा दिल इंसान की कहानी है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपनी मौत से नहीं डरता और बाकी बचे दिनों को पूरी खुशी के साथ गुजारता है। तो बताएं कि आनंद सहगल और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की भूमिकाओं में कौन से अभिनेता नजर आए थे और इस फिल्म के कुछ डायलॉग बेहद मशहूर हुए थे, वो भी लिखकर भेज दीजिए हमारे FB पेज पर। और तब तक सुनिए ये गीत मन्ना डी की आवाज में। गीतकार है योगेश, संगीतकार है सलील चौधरी, फिल्म का नाम है आनंद।

0: कभी तो हंसाए, कभी के रुलाए।
1: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए हैं, जो इस तरह से हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार और सुमिता सनपाल। और मशहूर डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाए। हमारे साथियों ने लिखा है कि 1940 के दशक में ऋषिदा ने न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन और एडिटर काम शुरू किया। उसके बाद वो मशहूर फिल्मकार बीमल रॉय के साथ मुंबई आ गए और दो बीघा जमीन जैसे फिल्म में सहायक निर्देशक और संपादक के रूप में काम शुरू किया। उसके बाद राज कपूर के साथ उनकी फिल्म अनाड़ी ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। उनकी फिल्मों की कहानियां, रोजमर्रा की जिंदगी, सरलता, सादगी, सौम्य हास्य और आम जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती थी। ऋषिदा ने आम मध्यम वर्गीय परिवार, मानवीय मूल्यों को अपनी फिल्मों का आधार बनाया।

0: और अब पढ़ते हैं आपके कुछ संदेश। फिल्म चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन और पटकथा इतनी सहज है कि फिल्म बिना किसी फूहड़ता के पारिवारिक मूल्यों और साफ सुथरे हास्य का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर की यही खूबसूरती है कि एक एक शब्द अपने भीतर किसी गीत की पूरी कहानी को छुपाए रहता है। और ये अगला मैसेज है कि आज ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है। उनकी फिल्में सादगी, संवेदनाओं और मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियां आम आदमी, उनके संघर्षों, परिवार और मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन्होंने व्यावसायिक चकाचौंध और कला फिल्मों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया। अगला मैसेज है कि आखिर ये दिल का कौन सा राज है जो हर धड़कन में उसी का नाम और उसी के आने का इंतजार जगाता है। अगला मैसेज है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का मानवीय स्पर्श इन नगमों को सिर्फ गीत नहीं रहने देते बल्कि उन्हें हमारी अपनी जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा बना देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने कला फिल्मों की गंभीरता और व्यावसायिक फिल्मों की चमक दमक के बीच एक संतुलित और सहज रास्ता अपनाया। उनकी कॉमेडी फिल्में जैसे कि गोलमाल या चुपके चुपके में फूहड़ता नहीं बल्कि सौम्यता और हास्य था। आनंद या बावर्ची जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने जीवन का दर्शन, रिश्तों की गहराई का संदेश दिया है। दोस्तों, आज का सुरीला सफर हम तय कर रहे हैं ऋषिदा की फिल्मों की बातें और उनके गानों को सुनते हुए। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते, सफलता, पुरुष का अहंकार, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर बनी एक बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म अभिमान की। तो बताएं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी बच्चन ने कौन सी भूमिकाएं निभाई थी और उनके साथी कलाकारों के नाम भी हमें लिखकर भेज दें।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

हमारे साथियों ने कुछ और बातें लिखी हैं और जवाब भी लिख दिए हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं और एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफ़र, तो हम अपने साथियों के संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। इस सफ़र में लोकप्रिय गायक सुबीर कुमार की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने और शास्त्रीय संगीत में माहिर गायिका के किरदार में नजर आई थी जया भादुरी बच्चन और उनके साथी कलाकार थे बिंदु असरानी, दुर्गा खोटे, ए के हंगल, डेविड अब्राहम और ललिता कुमारी। हमारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं कि 1957 में बतौर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुसाफिर, और उनकी मशहूर फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, खूबसूरत गुड्डी, आशीर्वाद, सत्यकाम, अभिमान, अनाड़ी और अनुपमा। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनोरंजन करने के लिए फूहड़ता का सहारा लेना जरूरी नहीं है। उनकी फिल्में शुद्ध सात्विक और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य होती हैं। आज के युग में ऋषिदा की फिल्में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। और एक साथी ने लिखा है कि आज के गीत ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत फिल्मों से होंगे। इन गीतों में जिंदगी की सच्चाई, हंसी, खुशी, रिश्तों की मिठास, दोस्ती, आंखों को नम कर देने वाला एहसास होगा। ऋषिदा को हम नमन करते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि प्रेम भी कितना अनोखा एहसास है, दो दिलों के बीच चाहे कितनी ही दीवारें हों उस

की पुकार फिर भी सुनाई दे जाती है। चाहत का असर ऐसा होता है कि इंसान जमीन पर चलते हुए भी खुद को तारों के बीच महसूस करने लगता है और तब दिल बार बार यही पूछता है, आखिर प्यार का ये राज है क्या। अच्छा जी, आज ऋषिकेश मुखर्जी की को याद करेंगे उनके फिल्मों के गानों से। उन्होंने कई पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों को बनाया जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसे देखकर हंसते हुए हम लोटपोट हो गए। उनकी फिल्में परिवार में सब लोग साथ बैठकर देख सकते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें वक्त की पहचान खूब थी। उस जमाने में उन्होंने वक्त की नब्ज पकड़ी और ऐसी फिल्में बनाई जो आम दर्शकों से लेकर एक खास वर्ग के लिए थी, जहां सब कुछ सीधा सादा था और दर्शकों ने भी उन फिल्मों को खूब प्यार दिया। आज भी उनकी बनाई फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो हम उन्हें देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। वे फिल्में कल भी कालजयी थी और आज के दौर के लिए भी बहुत अहम हैं। दोस्तों, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की और कौन सी फिल्में याद हैं, कौन से गीत आपको पसंद है, वो हमें लिखकर भेजते जाइए। उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमें बताएं। और अब हम बात करेंगे चुपके चुपके, एक बेहद मशहूर क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी हास्य और मजेदार उलझनों पर आधारित है। आपने ये फिल्म तो जरूर देखी होगी, तो बताएं कि प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी किस विषय के प्रोफेसर थे और उनके दोस्त प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा किस विषय के प्रोफेसर थे, और इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम लिखकर हमें भेज दे। आइए सुनते हैं ये गीत। वैसे तो सावन लगभग गुजर चुका है। आवाज है इस गीत में लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। धर्मेंद्र यानी प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी बॉटनी साइंस के प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और सुकुमार सिन्हा बने अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था अंग्रेजी के प्रोफेसर का। और साथी कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, उषा किरण, केष्टु मुखर्जी और ललिता चक्रवर्ती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कलाकारों ने स्टार बनकर नहीं बल्कि किरदार बनकर काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमोल पालेकर जैसे बड़े अभिनेताओं से उन्होंने बेहद सादगी भरे रोल करवाए। उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां जैसे कि जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, दीप्ति नवल कोई ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि घरेलू पढ़ी लिखी और मजबूत विचारों वाली महिलाएं होती थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषि दास सिर्फ हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि आंसुओं के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझाना भी उनकी कला थी। आनंद बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस संवाद के जरिए कैंसर से जूझ रहे एक इंसान की जिंदा दिली को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर उतारा वो मील का पत्थर है। अभिमान, पति पत्नी के बीच अहंकार, ईर्ष्या और संगीत के प्रति प्रेम के टकराव को बेहद संजीदगी और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिदा ने अपने 4 दशकों के करियर में 42 फिल्में डायरेक्ट की और उन्हें भारत के मिडिल सिनेमा का पायनियर माना जाता है। उनकी फिल्में मिडिल क्लास के माहौल को दिखाती थीं। एक मैसेज है कि ऋषिदा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नई राह दिखाई। उनकी फिल्में ना तो तड़क भड़क भरी होती थी, ना बहुत ज़्यादा संजीदा होती थी, बल्कि उनमें सादगी और संजीदगी का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम इंसान की रोज़मर्रा जिंदगी, उसकी खुशी, उसके गम और उसके मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। ऋषिदा की फिल्में जमीनी जनजीवन की जीवंत जगाती तस्वीर होती थी। दर्शक उनकी फिल्मों में खुद को महसूस करता था और बावर्ची फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक साथी ने लिखा है कि ये कैसा संयोग है कि इस वक्त टीवी पर फिल्म अनुपमा दिखाई जा रही है और गाना धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार चल रहा है और इधर रेडियो पर भी यही गाना चल रहा है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था। साथियों, 1979 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल की कहानी एक युवा राम प्रसाद और सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में कई मज़ेदार मोड़ के बाद सच सबके सामने आ जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। तो साथियों, इस मज़ेदार फिल्म की कौन सी बातें आपको याद हैं हमें लिखकर कमेंट कर दें और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तब तक सुना जाए ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है गोलमाल।

साथियों आपके कमेंट्स और जवाब हमें मिल गए हैं वो हम पढ़ देते हैं। अमूल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, अमिताभ बच्चन, देवन वर्मा और ओम प्रकाश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की अभिमान केवल एक संगीतमय फिल्म नहीं है बल्कि ये मानव स्वभाव और वैवाहिक जटिलताओं का एक गहरा मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। ये फिल्म आज 50 से अधिक सालों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि ये सिखाती है कि किसी भी सफल विवाह की बुनियाद एक दूसरे की सफलता का सम्मान करने और अहंकार को रिश्ते से दूर रखने पर टिकी होती है। अगला कमेंट है कि फिल्म अभिमान की सीख यही है कि महिलाओं के करियर पे पुरुष अहंकार को हावी नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और एक साथी ने लिखा है कि अभी आनंद फिल्म का जिक्र हुआ था तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी को उसमें काम करने वाले हर किरदार की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए तो लगेगा कि हम ही हैं वहाँ पर। हर किरदार अपना सा लगता है। मैं ये फिल्म जब भी देखता हूँ तो अपने आप को वहाँ पर खड़ा पाता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अभिमान में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में एक श्लोक संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत में रिकॉर्ड हुआ था और यहीं से अनुराधा पौडवाल के गीतों के करियर की शुरुआत हुई थी। साथियों 1980 में बनी फिल्म खूबसूरत एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी सख्त मिजाज मुखिया घर के सभी नियम कड़ाई से लागू करती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार तनावपूर्ण माहौल में रहता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब मंजू नाम की लड़की कुछ दिनों के लिए उस घर में आती है और अपने चुलबुले नटखट और जिंदा दिल अंदाज से घर के नियमों को चुनौती देती है। तो बताएं कि घर के मुखिया के किरदार में कौन सी अभिनेत्री थी, साथ ही कलाकारों के नाम भी बता दें। और खूबसूरत इस नाम से इस फिल्म का एक मॉडर्न रीमेक भी तो बना था तो उस रीमेक फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी हमें बता दें। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये एवरग्रीन सुपरहिट गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गुलजार गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं। घर की मुखिया के किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री दीना पाठक। मुख्य साथी कलाकार थे अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, ओम शिवपुरी, शशिकला रूपिनी और इस फिल्म के रीमेक में नजर आई थी अभिनेत्री सोनम कपूर। एक मशहूर हिंदी कॉमेडी फिल्म बुड्ढा मिल गया। फिल्म की कहानी दो गरीब और बेरोजगार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक उन्हें एक अमीर और लापता करोड़पति मिल जाता है और उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े अमीर आदमी को उसके घर पहुंचाकर वो भारी इनाम पालेंगे। उसके बाद फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं, तो हमें बताएं कि वो करोड़पति अमीर आदमी कौन था और साथ ही कलाकारों के नाम भी लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के हीरो की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तब तक सुनिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

साथियों के जवाब हमें मिल गए हैं। अमीर लापता करोड़पति की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे ओम प्रकाश, मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, देवन वर्मा, अर्चना और अरुणा ईरानी, और इस फिल्म के नायक नवीन निश्चल की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो, जो कि अभिनेत्री रेखा की भी पहली हिंदी फिल्म थी।

साथियों सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार बातें संदेश आपने हमारे साथ साझा किए आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है इज्जत फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा लेकिन फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, गीत गुलजार का और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: लता मंगेशकर के गाये इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन की एकजुटता और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि मृतकों, डुप्लीकेट और अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। श्री चौहान ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा।
1: इंडी गठबंधन तो बैठक के पहले बिखर गया, डीएम के बैठक में नहीं आ रहे, अखिलेश जी कहीं और, आपने पहले ही मना कर दिया, उद्धव जी फिजिकली नहीं वर्चुअली जुड़े, ये इसलिए कि इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी को नेता मानने को तैयार ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार। मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, खुद वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है, और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाए। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, जीवित नहीं बचा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए, कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: प्रदेश में नर्सिंग विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। परिणाम जारी होने से उनकी आगे की पढ़ाई, उच्च कक्षाओं में प्रवेश और करियर से जुड़ी बाधाएं दूर हुई हैं। विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतिनिधियों ने आज भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर उनका आभार जताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हित और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने जनसेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। प्रदेश में पहली बार गुना पुलिस ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी और प्रदर्शन की डिजिटल निगरानी के लिए 3 नए एप्लीकेशन शुरू किए हैं। इनमें ई प्रबंध ऐप से ड्यूटी का ऑनलाइन आवंटन और रिकॉर्ड, जबकि कवच ऐप से पुलिस की गश्त की निगरानी की जाएगी। ड्यूटी के दौरान निर्धारित मानकों के आधार पर पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उन्हें ग्रेड भी दिए जाएंगे। वहीं क्वार्टर मैनेजमेंट ऐप से सरकारी आवासों का डिजिटल आवंटन होगा। इन एप्लीकेशन को डीआईजी डॉक्टर असित यादव ने लॉन्च किया। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से धान, ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। और अब खबर एशियाई खेलों से, जिसमें भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम और चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अब पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में 35 एमपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम अभ्युदय 2026 का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में जनपद सदस्य उपचुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की तबियत बिगड़ने पर ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक ने तत्काल CPR देकर उनकी जान बचाई। और आगरमालवा जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सोयत कला में कल 3 आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त तत्वावधान में आंगन का मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को मलेरिया, HIV एड्स, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
1: सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। SIT से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
4: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
5: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहाँ आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
6: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
7: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवासीवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
8: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग से गेस्ट है सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
7: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनुपानंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
9: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
7: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री

0: चल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है असली नकली।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नख्मा निगार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है सांझ और सवेरा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है छाया।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सखी सहेली,
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार और ममता सिंह जी यानी रेडियो सखी ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल
2: अच्छी है। तो आज मेरा मन कर रहा है ममता जी, बहुत दिनों बाद हम सखी सहेली के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो आज मैं आपकी प्रशंसा करूं।
1: अरे पूछने की क्या जरूरत है, करनी है करिए ना, पूछ कर प्रशंसा क्या करना, अरे कीजिए, खूब जम के कीजिए। प्रशंसा भले किसे नहीं अच्छी लगती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या है कि
1: किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी, ना ही पूछने की जरूरत होती है, बस धीरे से प्रशंसा करती जाती है, कभी एक छोटी सी प्रशंसा भी दिल को छू जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रशंसा केवल तारीफ नहीं, रिश्तों के बीच की दूरी कम करने वाली एक भाषा है।
1: बिल्कुल, और भाषा जो है पुल का काम करती है। जरा सोचिए मंदाकिनी जी, अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद में शिकायतों की जगह थोड़ी सी प्रशंसा आ जाए तो शायद ये जनरेशन गैप भी कुछ कम हो जाए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर साड़ियों का संसार भी कुछ ऐसा ही है, कोई आपकी साड़ी देखकर बस इतना कह दे, अरे वाह ममता जी, आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने, और आप पर बात फब भी रही है, तो मन में एक छोटी सी खुशी उतर आती है।
1: बिल्कुल, अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि आज बहुत अच्छी लग रही है, बेटी अपनी माँ से कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है, और माँ तारीफ कर दे, शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, तो ये कैसा संवाद है कि लोगों को जोड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं तो उन अनुवादकों को थोड़ी सी उन अनुवादकों की थोड़ी सी प्रशंसा हम कर देते हैं जो एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा तक बड़े ही सुंदरता से पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, तो आइए सखी सहेली में बात करते हैं प्रशंसा की, जो हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी के जरिए लिखेंगे। और हाँ, बातों ही बातों में ममता जी हमने समझा दिया है आज के विषय क्या है।
1: बिल्कुल, तो चलिए एक बार दोहरा भी देते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि जो हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है पीढ़ियों में अंतर, और जो शब्द देते हैं हम श्रोताओं को वो आज प्रशंसा, अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा, और साड़ियों का संसार है जिसमें हम बोमकाई साड़ी की बारे की चर्चा करेंगे, और भाषाओं के बीच एक पुल जो आज अनुवाद दिवस के मौके पर। तो हमारे श्रोता बताएं कि वो जब किसी रचना को, अनुदित रचना जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, खासतौर से कि कोई मूल रचना पढ़ी, मान लीजिए बंगला साहित्य का साहित्य बड़ा समृद्ध है, और वहां से जब हिंदी में अनुदित कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है।
2: और इसके अलावा ममता जी वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आप भी साहित्यकार हैं तो क्या अनुवाद किया आपने कभी, कई बार हमारे श्रोता जो है बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो भी कोई अनुवादक के रूप में काम कर रहे हो, तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं
1: जी, और कौन सी किताब अनुवाद की है, और साथ में ये भी कि कई भाषाओं में, अंग्रेजी से हिंदी, और यही बात फिल्मों में भी तो लागू होती है, जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो जब वो अनुदित फिल्म होती है हिंदी में डब की हुई तो थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि वो लिप सिंक होता है, वो तो एक अलग ही विषय। तो अनुवाद के बारे में चर्चा होगी, हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो, और फिलहाल क्या करें,
2: फिलहाल ये भी बता दें कि सूजी के व्यंजन भी हम बनाने वाले हैं।
1: आप बनाएंगे ना?
2: मैं बनाऊंगी और आप खाएंगी।
1: सारे श्रोता मिलके खाएंगे। चलिए फिलहाल गाने का स्वाद लेते हैं।

0: भाई प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं. प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है. हाँ, कोई छोटा सा तोहफा देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है. और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना.
1: अरे आप तो मेरी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिसने मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है.
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए. यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में करने का अलग तरीका होता है.
1: हाँ?
0: तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है.
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी. हाँ? तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाने.
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया.
1: आप मुझे गोंड का ही साड़ी देने वाली है ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: हाँ, तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा.
0: अच्छा,
1: आपके प्रति.
0: मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं.
1: थोड़ी सी कम.
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे.
1: हाँ, और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी.
0: ओहो, हाँ, जब पहन के आएंगे तब. तो ठीक है, प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं. मंदाकिनी जी, आप बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है. लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना.
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी और आप मेरी प्रशंसा करेंगी उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा. फिलहाल हमारे जो श्रोता है खासतौर से हमारी बहनें जानना चाहती है कि कौन सी है बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें.
0: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी. बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है. बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान बन गई है और प्रमुख हथकरघा साड़ियों में गिनी जाती है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसकी बुनाई में इकत और अतिरिक्त धागे बनी सजावटी बुनावट का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है. बॉर्डर और पल्लू में महीन ज्यामिति और पारंपरिक आकृतियां साड़ी को एक अलग स्थान बना देती है. साथ ही बुमकाई साड़ियों में प्रकृति और लोक जीवन से प्रेरित बहुत सारी आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं ममता जी, जैसे मछली और कोई पक्षी है ना. इस तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं, शंख हैं, कमल है, मंदिर है और धार्मिक प्रतीकों से जो प्रेरित आकृतियां होती हैं वो इस साड़ी में हमें दिखाई देती हैं.
0: जो और ज्यामितीय डिजाइन भी बनती है. और बुमकाई साड़ियों में अक्सर गहरे और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है. लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है. वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है.
1: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
0: मतलब दो साड़ी चाहिए आप.
1: नहीं नहीं, लाल और मैरून. हाँ, एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून.
0: अच्छा,
1: या तो, नीला और मैरून.
0: तो मतलब ये
1: इस अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली.
0: अच्छा, कॉम्बिनेशन. हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी. वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला. यही विरोधाभासी रंग संयोजन बुमकाई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है.
1: हाँ, और बुमकाई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है. पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है. और बुमकाई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क है, दोनों प्रकार से तैयार की जाती है. मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी.
0: ओह, तो बड़ी महंगी होती है.
1: कोई बात नहीं.
0: कॉटन बुमकाई हल्की, आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क बुमकाई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है. और बुमकाई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं.
1: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं. इसीलिए एक बुमकाई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है.
0: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है. और एक सुंदर बुमकाई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है. धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है.
1: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं. बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है और हथकरघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है ममता जी.
0: और आज बुमकाई साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है. डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
1: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। बोमकाई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुंच रही है।
0: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है बोमकई। और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती है
1: देखने लायक होती है। बहुत ही सुंदर होती है बोमकई साड़ी। और अगर हमारी बहनों में किसी के पास है, जो सखियां सुन रही है, तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या बोमकई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
0: और दुपट्टा या स्टोल भी है तो उसका भी जिक्र करें। और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: तो मंदाकिनी जी आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी हिंदी से अंग्रेजी क्योंकि वैसे एक बात कहें अनुवाद करने की जरूरत नहीं है आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है
1: मिल जाता है
0: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि संस्कृतियों दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है
1: बिल्कुल सही कहा जैसे कि आप साहित्यकार हैं आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है और आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद और इसीलिए आज का एक खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं
0: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब कोई किसी किताब का अनुवाद किया जाता है तो जैसे इत्र की शीशी को इत्र की शीशी से इत्र दूसरी शीशी में जब डालते हैं पलटते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा इत्र उस शीशी में रह जाता है तो जो अनुवाद किया जाता है तो जो भाषा की अहमियत है वो जो संवेदनाएं हैं थोड़ी ना थोड़ी उसमें छूट जाती है लेकिन फिर भी जब हम अनुवाद करते हैं तो न पढ़ने से अच्छा होता है कि अनुवादित चीजों को अनुदित चीजों को पढ़ा जाए और हम उसमें मीन मेक निकालते रहे कि अरे इसमें तो वैसा लिखा है और यहाँ पर अनुवाद उसने ऐसा किया है
1: हम क्या करते हैं
0: भावों को
1: अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता तो कविताएं हो कहानियां हो उपन्यास हो वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है और साथ ही भारत जो हमारा देश है यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ममता जी हिंदी की बात करें तमिल है बंगाली है मराठी है गुजराती है असमिया है उर्दू है कन्नड़ है मलयालम है और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है
0: बिल्कुल हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है जरा सुनते हैं

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन होगा और हमारे श्रोता भी तैयार रहे, हम सब तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहे।
5: हाँ,
0: हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रही हैं
5: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी कि हमारे श्रोता तैयार रहे दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूले और अपने विचार लिखना नहीं भूले।
0: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाए और विविध भारती सुनते रहे।
5: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई।
0: बिल्कुल,
5: हम लाइव होंगे ना
0: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
5: बिल्कुल।
0: अभी आप जो पढ़ने वाली थी,
5: वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुंचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
0: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सबटाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सबटाइटल्स के साथ देखता हूं।
5: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना

0: पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
1: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहां पर मशीनों के द्वारा मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशंस किए जा रहे हैं एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफी समृद्ध बना दिया है और तेजी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
0: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, अनुवाद हो जाता है।
1: कई बार उपयुक्त शब्द की बजाय कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और आप वहां पर चूक जाते हैं।
0: बिल्कुल, और अब हम चूक रहे हैं, गाना नहीं सुनवा रहे।
1: बिल्कुल नहीं, ये रहा गाना, सुनते हैं।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे आपसे छोटे मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनकी भोलेपन पर. और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते ऐसा होता है.
0: आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं. तो दरअसल जो जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है.
1: बिल्कुल सही कहा. और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है. और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं.
0: बिल्कुल. और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये बहस कहां से कहां चली जाएगी. समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है. दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये स्वाभाविक है दो पीढ़ियों के बीच का
1: अंतराल होगा. लेकिन माता पिता को लगता है ममता जी कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं. शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है. और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई, दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई. जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है. तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है. और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है. और वहीं पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है. तो दोनों अनुभव अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं.
0: बिल्कुल सही बात है. दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं. बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है, वहीं युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है. उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रही हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है. और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता था. लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे. पहले माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करते थे.
1: बिल्कुल.
0: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है. युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है,
1: ये और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता. और लड़की हो या लड़का बहुत ही सहर्ष स्वीकार भी कर लेते थे रिश्ते को. अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं. तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है. इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे. इस तरह की बात जो हम करते हैं ना, वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती है.
0: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है. पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही. आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं. वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं. यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है. तो उनका ये कहना होता है, अरे भाई यहीं पर हमारे घर हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना
1: है, वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ, और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें जीना चाहते हैं और हमें उन्हें जीने देना चाहिए।
0: बातें कितनी भी कर लीजिए, रहिए इर्द गिर्द गीत के साथ, सुनते हैं ये गाना।

0: बिल्कुल सही कहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, और आपका साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ममता जी।
1: मुझे भी आपका साथ बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन हम इस पर अभी थोड़ी देर बाद आते, पहले एक जरूरी बात अपने सखियों से खास तौर से साझा कर ले, सखाओं से भी।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल रफ्तार जब हौसलों से मिलती है तो इतिहास रच उठता है, और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा, किरण पाहल, एम आर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज। इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराया अपना तिरंगा, और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। यह सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी, बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला, और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को, गोल्डन गर्ल्स कहलाए, और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
0: होती। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती है कि लड़कियां हैं, तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लेकर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है, लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो करती रही है।
1: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
0: बिल्कुल
1: लीक से हटकर कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही बात

0: वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी हैं जो कह रही हैं कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी भी दुनिया, किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए। कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
1: बिल्कुल सही कहा। एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसे अच्छी नहीं लगती। रेडियो सखी ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है। फिर वो सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगले 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।
0: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो, और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है। किसी के अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना। इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से, और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और मैं तो करता हूँ जरूर प्रशंसा।
0: अब कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: तो गाने की प्रशंसा करने वाली है क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं हाँ। जो आपके दिल में निवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारी हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हाँ। हमारे लिए हाँ। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे हैं जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगा देता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी आप खाएंगे तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगे।
0: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया, सूजी का हलवा बनाने वाली या उपमा या फिर कुछ डोसा।
1: हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी हैं हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती हैं वो हमसे। देखिए एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च लौकी पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दे थक कर फिर उनको रख दे। तब तक लौकी को कद्दूकस कर ले और अच्छे से धो के उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दे और हरी मिर्च भी डाल दे। साथ ही मसाले नमक अजवाइन ऑर्गेनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक ले। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटे दबा दे जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
0: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ही सहेली।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जई हो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार, और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े बॉल वाला रेडियो
1: जी,
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है, और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए।
1: जी, मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंचा, वहां बहुत बड़े बड़े रेडियो थे, वॉल वाले, और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट। तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूं।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे।
0: जी जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी,
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़ा रहेगा। तो इतने पुराने, मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का। विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही है।
0: क्या बात है।
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी जी,
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे। तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था, उनकी आवाज से, उनके, और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो, कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे। तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया, वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे। उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां, जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है, स्कूल छोड़ गई कोई बात नहीं
0: जी,
1: स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
0: जी, जी।
1: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
0: अच्छा।
1: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो, और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा। फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे, और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम, पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
0: जी,
1: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
0: अच्छा,
1: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने 3 साल में लिखी,
0: 3 साल में एक,
1: हाँ 3 साल में काम। मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
0: क्या बात है।
1: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
0: क्या बात है,
1: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
0: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
1: मैं रिसर्च उस तरह से देखो, मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहाँ भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: उससे वो पूरा माहौल जो ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
0: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से, तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
1: ये बंबई का ही है और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे
0: जी।
1: रमन मिश्री जी जो हमारे बहुत अच्छे उनकी भी दुकान वही है बंबई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, और तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
0: अच्छा।
1: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
0: बिल्कुल।
1: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका

0: साल पुरानी है
1: जी,
0: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक लोकल था, और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इंप्रेस मिल थी, उस इंप्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा। तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इंप्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए, क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इंप्रेस मिल, और उस इलाके की भी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी उस मिल के कारण। बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया, तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। तो जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरे कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया, लोकल को, एक यहाँ का इंप्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
1: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी, या अपने आप लिख जाती है
0: कहानी? लिखते समय कभी भी मैं ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
1: बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
0: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
1: बिल्कुल।
0: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
1: जी जी।
0: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी। और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सेक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
1: जी।
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सेक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
1: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

0: रघु को हंसाए, कभी ये बुलाए।
1: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं, जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति, जिसमें तीन कहानियां, साज नासाज और आमाजगा।

0: और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
1: अच्छा,
0: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज नासाज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपके सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
0: क्या बात है।
1: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। मुंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद मुंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चाल थे, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर की चाल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे
0: जी जी।
1: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया कि उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, किसी भी हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
0: नहीं बताया जाता,
1: ये हमको नहीं मालूम होता हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज ना साज का।
0: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी जिसमें सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है, तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
1: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
0: जी।
1: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन को नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी, सारंगी भी
0: और दुख में,
1: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो होगी अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
0: बिल्कुल।
1: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहाँ से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर्व
0: जी, पंडित कुमार गंधर्व,
1: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में, उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ, बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे ध्यान में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
0: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
1: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते। अच्छा, दिक्कत एक ये आती है, एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरी नजर में तो एक कहानी है
0: जी,
1: है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
0: जी।
1: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
0: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
1: जी जी,
0: तो ये क्या कहानी है, कैसे किसी के मन में?
1: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी, असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
0: शॉर्ट फिल्म थी, कोई
1: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
0: जी जी।
1: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी, जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
0: जी,
1: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसके, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
0: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
1: नहीं,
0: लिए
1: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था जिनका,
0: पर आपकी किताब शामिल थी उस,
1: किताब शामिल थी मेरी
0: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म, बेहतरीन।
1: वो असल में जैसे भी एक विज्ञापन फिल्म थी, वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान है
0: जी। बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
0: मौजों की रवानी,
1: मौजों की रवानी,
0: शोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना
1: जी।

0: बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना. फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं. हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रूपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं. तो बताइए इस शौक के बारे में.
1: आपको जो ना फिल्म का मर्मज्ञ विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आपको फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है.
0: सही बात है.
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है. दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए. तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया. तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे आज

0: होती है। तो सचित्र की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
1: अच्छा,
0: चारुलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है। 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना, उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
1: जी जी,
0: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताते कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
1: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
0: नहीं मिला,
1: नहीं मिला।
0: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
1: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
0: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
1: पास नहीं हो सकते,
0: पास नहीं हो पाऊंगा।
1: ओके
0: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
1: जी,
0: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
1: जी।
0: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
1: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
0: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
1: बस
0: बहुत हो गया।
1: हाँ।
0: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: अच्छा, मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में, लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
1: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा आप बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
0: नहीं, वो भी उसी परिवार से, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनाने, उसने पूछा ही, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं 6ठी फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
1: अच्छा।
0: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
1: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
0: उसके मतलब कारण पास हो गया।
1: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने हाँ, पास किया कि नहीं?
0: बिल्कुल पास किया होगा।
1: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
0: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
1: जी।
0: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
1: जी। क्या बात है।
0: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है, नीता के 4-5 भाई हैं, वो मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
1: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही है। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
0: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, और पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है
1: जी। साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम है, सुनते हैं यही गाना।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन और एक उपन्यास भी प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए हैं, तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूँ। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं, तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक है वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं,
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग है वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कसम जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उसको एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया है लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता, तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
0: जी जी,
1: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
0: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
1: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
0: जी।
1: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी कभी कहानी भी अपने ढंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
0: तुझी में वाट पाते।
1: हाँ हाँ, वो उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में कार फंस गई है
0: जी,
1: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उतनी धसती जा रही है
0: जी,
1: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है वो जो उसका अतीत है
0: जी जी।
1: तो वो जो सीन है ना वो आपने नहीं लिखा,
0: उस किरदार ने लिखा है,
1: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
0: बिल्कुल,
1: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्य को जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है
0: जी, जी।
1: उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
0: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़ जाते हैं।
1: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
0: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: एक बहारों मेरा जीवन भी सवारों, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
0: सुनते हैं ये गाना
1: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति, बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखा?
1: अब आ रही है,
0: आ रही है।
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ।
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसा आमाज का कहानी जो थी, लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था बसंत के साथ में, और मैंने पूरी कहानी उसको सुनाई जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया
0: जी।
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया है, और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे।
0: जी।
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है।
1: लिखना बाकी है जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं, जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैठ किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रति संसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लेखन?
1: फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती है जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीजें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी, और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
0: जी,
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड, ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
0: जी जी जी।
1: शिक्षा और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी। फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफसाइड। ऑफसाइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है, तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती है। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां,
0: तो ये सब अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
1: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
0: जी,
1: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
0: जी,
1: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है, तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
1: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ। मोटे मोटे शब्दों में
0: जी,
1: कि किसकी किसी तरह की मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
0: जी जी,
1: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
0: जी जी।
1: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
0: बिल्कुल। तो आपके

0: लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
1: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती है मिठाई तोलने की, उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था। और लिखता था कुछ, और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
0: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
1: हाँ एकांत चाहिए,
0: एकांत चाहिए।
1: मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ। हाँ। तो काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
0: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं, लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं। लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
1: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और मैं एक एक वाक्य को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है। और मेरी कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक, मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसा हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूँ ना भाई, मैं लेखक तो हूँ, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें, तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
1: उत्कृष्ट तो, चित्रकार
0: ये आप कहते हैं, तो चित्रकारी के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
1: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी, हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है, सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी से। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ है उनसे मिलाओ, उनको बच्चे कहाँ है उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं, बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं, और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया, और उससे पूछा गया कि तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
0: जी जी।
1: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन हाँ। करना बड़े कैनवास
0: बड़े फलक बढ़िया।
1: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए, उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था।
0: जी जी।
1: वो दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
0: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
1: नीता जी का योगदान ऐसा है,
0: सहयोग
1: नहीं, बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेले मेरी श्रोता होती है। कई महीने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है और उसके एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा?
0: जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: उपन्यास जो है काले अध्याय, हाँ
0: हाँ,
1: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले। उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की जब वो छोटी थी तब भी।
0: जी।
1: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पर ना हो।
0: जी जी।
1: लेकिन जब तक नहीं सुना तब तक उसको नींद नहीं आती थी, तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
0: क्या बात है।
1: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
0: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही है, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है। फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया, शुक्रिया।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
2: अगर तुम मिल जाओ,
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
6: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं, ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिराई उदासी परेशान करती है, जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद फिसलती जाती है, ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

रूठी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब खुश होती है जिंदगी।

0: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं छाती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चमकते रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हमेशा हरे रहते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर सी सजी होती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का।

भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वो कांटों की परवाह नहीं करते। खुशनसीब होते हैं जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

प्यार की खुशबू से जिंदगी लबरेज हो गई एक रोज। हर मुलाकात में फूलों का खिलना था, हर बात में मुस्कान। माँ ने सिखाई थी एक बात, एक गठान दी थी। लगता था अब कभी कुछ टूट नहीं सकता, लेकिन हर वक्त ठहरा नहीं। धीरे धीरे रिश्ते बदलते गए, शब्दों की जगह खामोशी ने ले ली और समझ की जगह ना समझे ने। माँ ने जो गठान लगाई थी वो जुड़ने के लिए थी, लेकिन अब टूटने की जिद करने लगी। सिक्के अब भी जेब में थे, पर हाथ कांपने लगे थे उन्हें खर्च करने से पहले।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है। कुछ दर्द भरी स्मृतियाँ होती हैं, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान हो जाता है। कुछ दर्दीली स्मृतियाँ हमें सहलाती भी हैं। कुछ प्यारी स्मृतियाँ हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं प्यार भरे गीत।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
1: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
0: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
1: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
1: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
1: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला सुरेलकर।
1: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
1: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
1: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
1: जी,
0: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
1: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
1: जी,
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
1: जी,
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
1: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
1: जी,
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
1: जी,
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि ये सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथ ही वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल, श्रोताओं अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है, लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
1: जी।
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये जरूर जानें।
0: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
1: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
0: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
1: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
1: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: चाचा।
3: सच्चियाकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
0: निर्मल को हरि सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरि सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मलजीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन-जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
0: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग बुलेट्स कहे जाने वाले 18वें स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
1: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
6: अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर, ये तो हमारा काम है।
6: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
6: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, ला। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। हाँ, देखो क्या चमक रहा, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
0: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
6: एक मिनट मान सिंह, तो मैंने फिट होने दे यार। एक मिनट, मैं अपने घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
1: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
1: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
1: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर छह शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रण कौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
0: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को छह पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
5: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
4: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं। जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया। ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
5: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
4: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।

0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, अब भागते कहाँ हो? मुझे तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था।

0: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
1: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों, सेखों 102, सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
2: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए।
0: उनके इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
2: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

फ्लाइंग ऑफिसर सेख हूं। परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सबसे

0: lentils, rapeseed, masoor, mustard oil, safflower, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जय माला
4: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
6: सखी सहेली
5: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे
5: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा
6: मुझे याद सब है जरा जरा
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
4: मन का सुकून दिल की आरती
5: सुरीली संदली

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भोपाल में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि
1: रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के लिए 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को मजबूत कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण की क्षमता विकसित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रस्तावित मार्च तथा ED गठबंधन की बैठक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। NI के अनुसार श्री चौहान ने कहा कि 2 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ मार्च को वे परिवार बचाओ मार्च मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद आत्ममंथन करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगती है।
2: ये सेव डेमोक्रेसी मार्च नहीं है, ये सेव डायनेस्टी मार्च है, परिवार बचाओ अभियान। लेकिन जनता ने तय किया कि अब परिवारवाद की राजनीति चलने नहीं। अभी चुनाव नजदीक आते हैं, तब ये ईडी गठबंधन, राहुल जी, खड़गे साहब, ये या तो अदालतों पर या संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करने लगे। अगर कोई अदालत मन के मुताबिक फैसला ना दे तो न्यायपालिका पर सवाल उठाते, विदेशी धरती पर जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की वकालत करते हैं। ये देश की बात करेंगे, देश के लोकतंत्र की बात करें। जब जनता के दिल से मोदी जी को नहीं हटा पाए, एक बार फिर अराजकता और देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं।
0: श्री चौहान ने ईडी गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि बैठक से पहले ही गठबंधन में मतभेद सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख दलों के नेता बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि उद्धव ठाकरे वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरू ढांडा और कायन चेनाई को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए स्पर्धा में भारत के लिए पहला एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय तीरंदाजों ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एशियन गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। तो आइए जानते हैं कि उमरिया जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला रही है।
4: उमरिया जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मध्यम एवं लघु रकबे के किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका समृद्ध हुई है। ग्राम परसौरा निवासी किसान सूरज पान सिंह बताते हैं कि
5: कृषि विभाग द्वारा मुझे खेती किसानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप प्रदान की गयी, जिसे मेरी सिंचाई क्षमता की गई और उसे मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।
4: उमरिया जिले के कृषि एवं किसान कल्याण अधिकारी संग्राम सिंह मरावी बताते हैं कि
6: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्रीय योजना है और इसमें 2025 में 69 किसानों को लाभान्वित किया गया था। 2026 में 75 किसानों को अभी लाभान्वित किया जा चुका है और इसकी प्रक्रिया सतत पंजीयन का चालू है और यह मार्च तक चलेगी।
4: आकाशवाणी भोपाल के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे। आरसीवीपी नरोना प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में सुबह 10:30 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में 500 से अधिक वरिष्ठ जन शामिल होंगे। इस अवसर पर 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रदेश भर में वरिष्ठ जनों के लिए स्वास्थ्य जांच, डिजिटल प्रशिक्षण, मनोरंजन गतिविधियां और उनके अधिकारों तथा सहायता व्यवस्थाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी भोपाल परिसर में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत करीब 10 स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता मित्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर केंद्र के क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा पी वर्धन, स्वच्छता ही सेवा अभियान के नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक देवेंद्र कुमार सक्सेना सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में किसानों का ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। किसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार www.mpeupargan.nic.in पर पंजीयन करा सकेंगे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं के केंद्रों पर पंजीयन निशुल्क होगा, जबकि एमपी ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर तथा लोक सेवा केंद्रों पर अधिकतम ₹50 शुल्क लिया जा सकेगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लगभग लिया गया। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मध्य प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव और सह प्रभारी रेखा वर्मा आज भोपाल पहुंचे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये उनका पहला महत्वपूर्ण दौरा है। कटनी, मुरैना, आगरमालवा और खंडवा जिलों में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले में शासकीय आईटीआई भानपुरा में जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला प्रशासन द्वारा युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलीराजपुर में युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए विशेष अभियान 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। झाबुआ जिले में कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरकोट और उप स्वास्थ्य केंद्र सेमलिया का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 2,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भोपाल में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून दिल की आरती
4: सुरीली संदली।

0: और वीरों अब जो है आपको एक बढ़िया जानकारी दिलवाते हैं। जब भेड़वार्ता है आधुनिक विधि से जैविक एवं अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शनि कुमार और इनसे बातचीत करी है रीता बेन ने। तो भैयानों जब बातचीत जरूर सुने तो आपको जो भी जो है लगे कि वास्तव में जो है आधुनिक विधि से यदि सब्जियों को उत्पादन करें हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
1: नमस्कार श्रोताओं, ग्राम सभा कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको नित नई जानकारियों से अवगत कराते रहें। आज के बदलते परिवेश में हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और हम ये चाहते हैं कि हम जो खाद्य पदार्थ भोजन में लेते हैं वह कीटनाशक और रसायन मुक्त हो और उनका उत्पादन भी सुरक्षित तरीके से हुआ हो। और आज की भेंटवार्ता का विषय भी इसी से संबंधित है। विषय है जैविक एवं अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन की आधुनिक तकनीक। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सनी कुमार जी को, जो कि सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैविक एवं अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन से क्या तात्पर्य है।
2: जैविक और अवशेष मुक्त सब्जी का उद्देश्य मुख्य रूप से सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्वक भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन जैविक खेती और अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन खेती ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले अगर जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी जगह पर गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, नीम युक्त जो पदार्थ है उनका उपयोग किया जाता है। जबकि अवशेष मुक्त खेती की बात करते हैं तो उसमें हम रसायनों का सीमित व वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होता है जो अवशेष होते हैं, ये जो रसायन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना यूज हों, उसका उपयोग एक सीमित तरीके से किया जाए।
1: जी सर, आजकल हम देख रहे हैं कि अवशेष मुक्त और जैविक सब्जियों की डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग उसे लेना ज्यादा पसंद करते हैं, इसका क्या कारण है?
2: जैसा कि मैम हम जानते हैं कि जो सब्जियां आजकल आ रही हैं मार्केट्स में वो ज्यादातर जो पारंपरिक खेती होती है उसके थ्रू उसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो सब्जियां हमारे मार्केट्स में आ रही है। धीरे धीरे निरंतर जो हमारे उपभोक्ता है उनकी जो
1: मांग है,
2: उनकी जो मांग है या उनकी जो जागरूकता है वो धीरे धीरे क्या है बढ़ रही है। तो उनकी जागरूकता बढ़ने के साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग भी हो रहे हैं। तो जो मार्केट में सब्जी आ रही है ऑलरेडी उसमें जो है रासायनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो जैविक खेती है या अवशेष मुक्त खेती है उससे जो उत्पाद आ रहे हैं तो वो मार्केट्स में या उपभोक्ता के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो कि उसकी इस वजह से उसकी जो मांग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है
1: और खासकर वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, कारण ये भी है। सर, आप ये जानना चाहेंगे कि जैविक और अवशेष मुक्त खेती की शुरुआत कैसे हमारे किसान भाई कर सकते हैं और इसकी आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी हैं?
2: जी मैम, जैविक और अवशेष मुक्त खेती की शुरुआत मेनली हमारे किसान भाई सबसे पहले जो मिट्टी का परीक्षण है सबसे पहले उनको वो कराना चाहिए, फिर उसके बाद जो रोग मुक्त पौध है या स्वस्थ बीज है उसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें जैविक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका जैसे कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, नीम या गोबर की खाद या जीवा अमृत या जो जैविक कीट नियंत्रक हैं उनका उपयोग हम अपने सॉयल में कर सकते हैं, क्योंकि जो जैविक खेती होती है वो उसमें रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसको हम बिल्कुल नहीं डालते हैं, जबकि अवशेष मुक्त खेती में हम थोड़ी बहुत मात्रा में उसको डाल सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी आधुनिक तकनीकें हैं जो इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे मल्चिंग या ड्रिप इरिगेशन या आप उसके साथ मिश्रित खेती या सफैसली खेती, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जैव एजेंट्स हैं जिनका उपयोग जैसे ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, सीडोमोनास इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं, इसका जो है

0: जैविक खेती या अवशेष मुक्त खेती में भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसमें हम जो है जो कल्चरल या जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं उसका उपयोग मेनली इसमें हम करते हैं, जैसे फसल चक्र अपनाना, रोग ग्रस्त पौधों को हटाना, या मित्र कीटों का संरक्षण करना, या खेत की निगरानी करना, या जो प्रतीक्षा अवधि होती है जब हम दवा का छिड़काव करते हैं उसके बाद फसल की तुड़ाई होती है, उसके बीच का जो अंतराल होता है उसे हम प्रतीक्षा पीरियड बोलते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम दवा का छिड़काव करते हैं उसके बाद जो है उसको हमें जो प्रतीक्षा पीरियड होता है उसके बाद ही करना चाहिए। वो 5 दिन हर अलग अलग जो भी हर्बिसाइड्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका अलग अलग होता है, तो कम से कम 5 से 7 दिन का वो गैप रखना चाहिए, जिसके बाद ही हमें उसे हार्वेस्ट करना चाहिए।
1: सर, आप ये जानना चाहेंगे कि संरक्षित खेती अवशेष मुक्त उत्पादन में कैसे सहायक हो सकती है?
0: जैसा कि आप जानते हैं, संरक्षित खेती का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर के या किसी बंद चीज के अंदर खेती करना, क्योंकि आजकल हम ट्रेडिशनल या जो हमारी पहले की खेती है उसको हम मेनली ओपन फील्ड में करते हैं। ओपन फील्ड में जो है जो कीट होते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनके अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ओपन कंडीशन होती है, उनके फ्लाई कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि जो संरक्षित खेती होती है वो एक बंद स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम मेनली पॉली हाउस या नेट हाउस का उपयोग कर सकते हैं। नेट हाउस में हम जो है चारों तरफ से जो नेट होता है वो उससे कवर करके रखते हैं, जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है उससे कवर करके रखते हैं, जिससे कि जो हमारे इंसेक्ट हैं उसके अंदर फ्लाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट का अटैक है वो बहुत कम या बहुत कम मात्रा में देखा गया है। वहीं जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस भी बहुत टाइप्स से होते हैं। जो पॉली हाउस हम उपयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा वातावरण है या अकॉर्डिंग टू एरिया, उसके अकॉर्डिंग हम जो है पॉली हाउस का यूज करते हैं, क्योंकि 5-6 टाइप्स के पॉली हाउस होते हैं, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं।
1: सर, ये फसल चक्र और मिश्रित खेती का अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन में क्या महत्व हो सकता है या होता है?
0: जी मैम, फसल चक्र और मिश्रित खेती, ये अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि फसल चक्र का मतलब है कि हम एक ही खेत में एक ही सब्जी को बार बार उगाना, एक सब्जी के बाद दूसरी सब्जी, तीसरी सब्जी, उसी सब्जी को बार बार उगाना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी खेत में बार बार एक ही सब्जी को उगाते हैं तो उसमें रोग जो आपके इंसेक्ट पेस्ट के अटैक होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको एक जैसा वातावरण मिलता है, उनको अपनी लाइफ साइकिल कम्प्लीट करने के लिए एक से अधिक जो है क्रॉप्स मिलती है। तो और मिश्रित खेती का मतलब है कि एक फसल में एक साथ एक या एक से अधिक फसल को एक साथ उगाना, जिसमें हम दो फसल को मिक्स करके या जो आपकी दो सब्जियां हैं उसको मिक्स करके एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि आप जो टमाटर लगा रहे हैं, टमाटर के साथ आप मैरीगोल्ड लगा सकते हैं चारों तरफ, या आप कैबेज लगा रहे हो जिसे हम पत्ता गोभी बोलते हैं या फूल गोभी बोलते हैं, उसमें भी हम चारों तरफ गेंदा है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो गेंदा होता है वो आपका काम जो करता है, जो आपके इंसेक्ट होते हैं जब हम उसको बॉर्डर पे लगाते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपकी मेन फसल जो होती है, जो मुख्य फसल होती है उस पर अटैक ना करके कि गेंदे के पौधे हैं उस पर अटैक करता है, तो जिससे आपकी जो मेन फसल होती है वो सुरक्षित रहती है। और जबकि फसल चक्र में हमें कभी भी एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि एक ही सब्जी जब बार बार उगाते हैं तो उसमें रोग के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए, हमें एक ही कुल के पौधों को नहीं उगाना चाहिए। जैसे अगर हम लगातार टमाटर जो एक कुल में आते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, ये सारे एक कुल में आते हैं, तो जब क्योंकि जो भी रोग होते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, वो एक ही कुल के पौधे पे ज्यादा अटैक करते हैं, वो उनका नेचर होता है। लेकिन जब हम उसी को अलग अलग कुल के पौधे अलग अलग बार में उगाएंगे, एक फसल के बाद दूसरे कुल के पौधे, जैसे अगर मैं टमाटर लगा रहा हूँ तो अगली बार उसमें लौकी लगाना है, भिंडी लगाना है, या तुरई लगाना है, या तरबूज लगाना है, बदल बदल कर उसको अगर हम ग्रो करते हैं तो जो इंसेक्ट का अटैक होता है उसका चांसेस कम होता है।
1: जी, मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन में कैसे उपयोगी है?
0: तो मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई ये आधुनिक तकनीक में बहुत ही उपयोगी है। इस मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग मेनली हम उसे कहते हैं जिसमें हम अपनी सॉइल्स को जो है किसी स्ट्रक्चर से कवर करते हैं। मल्चिंग भी मेनली दो टाइप से होती है, एक होती है आपकी सिंथेटिक मल्च, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक मल्च। ऑर्गेनिक मल्च में मेनली हम वो पदार्थ यूज करते हैं जो बाद में डिग्रेडेड हो जाते हैं सॉइल में, सॉइल में घुल जाते हैं, तो उसका उपयोग मेनली हम करते हैं उसमें। जैसे काल के पिस्टा बच्चा उसका उपयोग कर सकते हैं या किसी घास का उपयोग कर सकते हैं या बहुत सारे लीफ जो पेड़ की गिर जाती हैं उसके अवशेष होते हैं उसको उपयोग कर सकते हैं या जो शुगर केन जो गन्ना होता है गन्ना का रस निकालने के बाद जो ट्रस बचता है मेनली हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक मल्चेस में आते हैं, इनका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग इसके लाभ हैं। और जो ड्रिप सिंचाई की बात हो रही है, ड्रिप सिंचाई में मेनली हम जो पानी है वो उसको एक साथ फ्लडिंग इरिगेशन के थ्रू, फ्लडिंग सिंचाई के थ्रू ना देके बूंद बूंद सिंचाई जो है उसके सीधे जड़ पर देते हैं। इसमें पानी की बचत भी होती है, दूसरा जब हम बूंद बूंद सिंचाई उसकी जड़ पर देते हैं तो जो अगल बगल का वातावरण होता है, जो अगल बगल की मिट्टी होती है उसमें नमी की मात्रा कम होती है, तो उससे हमें फायदा ये मिलता है कि जब नमी की मात्रा कम होने से जो अगल बगल के खरपतवार हैं उनको उगने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिलती है जिससे कि वो नहीं उगते हैं।
1: डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जैसे खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, है ना
0: जी।
1: लेकिन अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन में हम बिना रसायन के खरपतवार को किस तरह से खत्म कर सकते हैं?
0: जी मैम, अगर हम अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें जो खरपतवार है वो बहुत ही इफेक्ट डालते हैं, तो जिसकी वजह से जो हम रसायन का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, अगर गर्मी का सीजन है तो सबसे पहले उसमें हमें उथली जुताई करनी चाहिए। उथली जुताई करने से जो आपके खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं या उसके जो रूट्स हैं जो जमीन में हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसकी जुताई करने के बाद हमको जुताई करने के बाद जो फसल है उसमें जो स्वस्थ पौध होती है उसको अपनाना चाहिए, या जो क्लोज स्पेसिंग जिसे स्पेसिंग बोलते हैं, जो एक फसल से दूसरे फसल की दूरी होती है उसको मेंटेन रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम एक फसल से दूसरे फसल की दूरी या प्लांट्स की ज्यादा तेजी से होती है, जब ज्यादा तेजी से होती है तो जो खरपतवार होते हैं, जब हमारी क्रॉप बड़ी होने लगती है तो खरपतवार के उगने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। उसी दिशा में हमारा मल्चिंग भी आता है, जैसे हमने अभी बात की मल्चिंग की, वो भी उसी दिशा में आता है, क्योंकि जो मल्चिंग का मेन काम है जो नमी संरक्षण करना और जो घास जो उगती है उसको कम करना। क्योंकि जब ऊपर से हम किसी मल्च को या किसी ऊपर से कोई कवर अपनी सॉइल पे डालते हैं तो उसमें जो है डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो घास है वो नीचे की तरफ या उसका सीड है वो जमाव के लिए जो उसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता, जिससे कि हम रसायनों का उपयोग कम करते हैं उसमें
1: नहीं के बराबर।
0: हाँ,
1: जैसे कीट और रोग नियंत्रण के लिए हमारी जो आधुनिक जैविक तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं?
0: मेनली जब हम आधुनिक जैविक तकनीक की बात करते हैं तो उसमें एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली जिसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं वो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस और दूसरी चीज रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता को हम कम करने के लिए प्राकृतिक और जैविक तरीकों से फसल की सुरक्षा हम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले स्वस्थ और रोग मुक्त बीज एवं पौध सामग्री का जो चयन है वो बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद जो है जो हम बीज उपचार करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैसे जैव एजेंटों का प्रयोग हम कर सकते हैं और कई तरह के रोगजनक फफूदों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे जब हमारी क्रॉप्स स्टैंडिंग मोड में खड़ी मोड में रहती है, जब उग जाती है तो उसमें बहुत सारे हम जो है ट्रैप्स का जिसे हम फेरोमोन ट्रैप्स बोलते हैं, नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप्स बोलते हैं, जो मेनली पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप्स हैं ये बहुत सारे जो कीट हैं उनको आकर्षित करते हैं। जैसे आपके जो पीले कीट्स हैं जो सफेद मक्खी होती है उसको आकर्षित करने का काम करती है, उनको जो नीले ट्रैप्स हैं वो मेनली जो है जो थ्रिप्स होते हैं उनको जो है अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये जो ट्रैप्स होते हैं तो उस जो आपकी मेन फसल होती है तो उससे हम कीटों को जो है बचा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो आपके जो लाभदायक कीट हैं, जैसे हम लेडी बर्ड बीटल का नाम सुनते हैं जिसे हम मित्र कीट के भी नाम से जानते हैं, आपने फसल में देखा होगा रेड कलर का एक कीट होता है जो आपने देखा, लेकिन हमारे किसान भाई इस बात को समझ नहीं पाते, कभी कभी उसको देखकर वो रसायन का भी छिड़काव करते हैं। लेकिन वो हमारे मित्र कीट हैं, वो क्या करते हैं जो आपके हानिकारक कीट्स हैं उनको जो है वो खा जाते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो हमारे जो क्रॉप्स है उसको जो है सुरक्षित रखते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे जो है सूक्ष्म जीव या जैव कीटनाशक हैं, जैसे वर्बेनिया है, बैसिलस थिनेजेंसिस है, ऐसे बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव जैव कीटनाशक हैं उसको भी हम प्रबंधन में ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उम्मीद है कि उन्हें ये सब महत्वपूर्ण जानकारी सुन के बहुत ही लाभ मिलेगा और आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: नमस्ते।
2: तो भैया बहनों आपने जो भेंट वार्ता सुनी आधुनिक विधि से जैविक एवं अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन डॉक्टर शनी कुमार से बात कर रही थी रीता बहन और अब सुनाते हैं जो लोकगीत रहीस सिंह यादव और बिन के साथियों से

तो भैया गोविंद सिंह यादव और उनके साथियों से आपने सुनो जो चौकड़िया और जय के संगे अब ग्राम सभा संपन्न करवे की बिरिया हो रही है। मैंने चलत चलत किसान भाई तो जरूर ध्यान रखें सामिक तौर पे जो सलाह है कि आप जो है हमने पहले बताया था आपको कि अगर खेतन में कूड़ा कचरा है अवशेष है तो उन्हें जलाएं नहीं बल्कि उनको उचित निदान करें या तो खेत से बाहर ले जाकर उनको ढेर लगा दें या फिर पत्ते वगैरह हैं तो उनकी जो है आप जो है कंपोस्ट खाद बना रहे हैं ना। और अब चलत है चलवे की बिरिया तो सभी भैया बहनों को महेश भैया की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। आज के कार्यक्रम का विषय है व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: लोकतंत्र में जन सेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दे, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, GST परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं। और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
3: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में GST एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए GST परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए IBC ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा, इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए, क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा। और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान, प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
4: धन्यवाद।
2: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
4: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में ये राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के 4 स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस, इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर, तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
2: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
5: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए तीन कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के तीन महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे दिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है। पुलिस का नाम आते ही छोड़ो, इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब जीरो एफआईआर जैसे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर ट्री किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है। इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
2: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदी हो चुके, शायद वो अभी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
5: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक सीआरपीसी थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सके, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सके। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही बीपीआरडी इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
2: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
4: देखिए 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जनविश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में कि वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा, क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों का आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया, तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
6: जी,
4: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
6: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
4: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
6: जी।
4: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
6: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ है।
4: देखिए अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था, दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारियों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो 4 कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और 4th जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस से जुड़ा हुआ है। अब इन 4 कोड्स के आने के कारण क्या हुआ इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था और उस फोरम ने भी इन चार कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन चार कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
6: ये जो चार लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो NPAs हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
5: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूं, उसमें IBC की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं, प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स में जाना पड़ता था और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए। और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
6: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है, और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
5: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए, जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था, गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी, और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है, और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है, और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है, और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
6: बिल्कुल,
5: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं, जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लैब में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
6: बिल्कुल, और प्रफुल्ल जी हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, आज छोटे से छोटा कारोबारी बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो वो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
4: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक, सोशल इंक्लूजन। मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है। क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते हैं तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना ये बहुत बड़ा बदलाव था
2: जी।
4: दूसरा फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221 रुपया 39 पैसा है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीस 299 रुपीस क्यों छापते हैं, तो वो एक रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में दो पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए

0: है आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम, जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
1: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है कुल मिलाकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है। ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
0: जी,
1: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था?
0: यही था।
1: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या? अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है। और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। दो तीन प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के, जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
0: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय था व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। मर्डर टू फिल्म से सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत, लिखा है कुमार ने और संगीत है सिद्धार्थ हल्दीपुर का।

छठी सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे

0: आदित्य रिखारी और पायल देव की आवाज में आप सुन रहे हैं दे दे प्यार दे टू। इस फिल्म से गाना कुमार के बोल, पायल देव और आदित्य देव का संगीत।
1: मैं मेरी तू ही जागी ना।

0: इसी गीत के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में

0: 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते, 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स है ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा सुविधा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
4: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
5: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
6: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहां पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
4: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
7: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी

0: गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
1: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
1: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। पेश करते हैं पहला गाना आकाशवाणी इस फिल्म से। के और सुनिधि चौहान की आवाजों में लव रंजन के बोल और हितेश सोनिक का संगीत।

बैंग बैंग फिल्म से आप सुन रहे थे ऐश किंग शिल्पा राव और शेखर अफजियानी की आवाज़ में गाना, अनमिता दत्त के बोल कुमार और कुमार के साथ और विशाल शेखर का संगीत। अगला गाना पटियाला हाउस से, विशाल ददलानी की आवाज़ में अनमिता दत्त के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ

0: लेजर बनाते हैं सरकार बनाते हैं तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है और जब एसआईआर की बात आपने कहा एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में उस टाइम तक एक अकेले स्टेट में हुआ था उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है ऑलमोस्ट आखिरी पर जाए है उसके बाद दो तीन स्टेट बचते हैं तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन को मशीनरी सब एसआईआर की पर्पस एसआईआर क्यों किया जा रहा है एसआईआर कैसे होता है सबको पता लग गया है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं तो ये बात जाहिर है क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्रों में ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या एनसीआर में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं चाहे बीएलओ हो ईआरओ के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ एक तो है कि शहरी मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है और इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है खराब है लेकिन गाँव के हिसाब से देखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया बच गया उनके साथ ज्यादा नाम कट गया तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है तो उनके पास बीएलओ जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए ये अलग बात है क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है यह एक एन्यूमरेशन एक प्रक्रिया है तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है
1: बिल्कुल
0: क्यों आपने नहीं करें हम
1: कहा और देखिए मैं भी दिल्ली का मतदाता हूं और मेरे परिवार में चार लोग हैं चारों मतदाता हैं और चारों को नोटिस आया है तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था उन्हें दिया मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही है ये सवाल अशोक जी से है और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है तो कैसे देखते हैं आप
2: देखिए इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
1: जी
2: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे फिर तीन सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी बहुत लोग मरते थे गोलियां चलती थी उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूँ जब बलराज मदोक उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है देखिए जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है लेकिन उमेश जी मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और

0: वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है लेकिन अपने देश में मैं देखता हूं कि चुनाव आयोग जो है जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं तो इस पृष्ठ भूमिका में अगर हम बात करें जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की उन्होंने मनमानी की और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की जब बांकेपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
1: जी
0: तो कहा गया नहीं नहीं ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने यदि कभी भी जुत भी मेरी पट भी मेरी तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी
1: बिल्कुल
0: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गर्मा रही है वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली उसमें भी सभी विपक्ष दल नहीं आए हैं यानी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है और समय समय पर सरकारें बदली हैं और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल रहे हैं लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो अगर मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी इसकी कोई तारीफ नहीं करता तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है अच्छा जी आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECI नेट नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है
2: मैं इतना ही बताऊंगा फैक्चुअली उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूं कि BLO नहीं AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं आप AERO को पूछिए क्योंकि जो टोटल उसका कागज है उसका जो दाखला करने की जो उपाय है तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है वो सीईओ के पास भी नहीं होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर डीजी या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया, उनका स्पष्टीकरण दिया है। बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन, उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमिटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला, तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया। दूसरी बात होगी राजनीति, इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा। ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी मैं सोच रहा हूं इन दिनों ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है, वो जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है, और जो विपक्ष में है उनका, और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व बनता है। ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है। जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपेंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं, और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे, और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला, उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए, उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है, और ऐसे भी लेना चाहिए, ये बात नहीं कि ये उनका दायित्व है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका के पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस वो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना, या फिर उनके पूरे एसेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका विषय है एसआईआर और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
0: देखिये, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने भी लाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनका विश्वास पास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। तो मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है, अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं, लेकिन जब लोग देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली। तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है? तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत

ऋषि दा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: कुरशीदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में ऋषिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने ऋषिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में ऋषिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, कभी कभी किसी के चले जाने से सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं होता, हमारे भीतर बसा हुआ एक पूरा संसार जैसे अचानक खामोश हो जाता है, जिसे अपना समझकर जीवन की सबसे खूबसूरत उम्मीदें सौंप दी थी, वही जब बिना पीछे देखे चला जाए तो सवाल सिर्फ उसके जाने का नहीं रहता, सवाल ये होता है कि उसके साथ हम अपने भीतर का कितना कुछ खो आए हैं।

यादें इतनी आसानी से कहां जाती हैं? कभी उसकी कही हुई कोई बात अचानक कानों में पड़ती है, कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए पुराने दिनों की आहट मिलती है। दिल एक पल को सोचता है, शायद वह लौट आए, शायद बीती हुई बातों का कोई अर्थ अब भी बाकी हो, शायद इसी कारण आज भी उसकी आंखें किसी लौटते हुए कदम की आहट नहीं बल्कि उस बीते हुए प्रेम की कोई आखिरी निशानी तलाशती है। हाँ, हर रोज।

रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है तब यादें जागती हैं, वह भी जागती है और अपने बीते हुए प्रेम के साथ थोड़ी देर बैठती है। हाँ, कहते हैं रिश्ते कभी कभी खत्म हो जाते हैं, मगर उनसे निकली हुई धुन बहुत देर तक हमारे भीतर बजती रहती।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इतने वर्षों बाद भी मेरे भीतर तुम्हारे लिए कुछ बचा हुआ है। हाँ, कुछ बचा हुआ है। मैं उसे प्रेम कहूँ, कमजोरी, आदत या कुछ और, मैं आज भी इसका उत्तर नहीं जानती। हाँ, ये सच है, शायद कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, वे बस हमारे साथ उम्र भर चलते रहते हैं।

0: क्या।
1: कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस अपनी आवाज खो देते हैं। दो लोग अलग हो जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, मगर किसी एक के भीतर वो कहानी वहीं ठहर जाती है, उसी मोड़ पर, किसी किताब के खुले पन्ने में, किसी पुराने गीत में, हाँ खिड़की से आती उस हवा में भी। तो यकीनन उसने उसे खो दिया है, लेकिन अपने भीतर उस प्रेम को खोना नहीं चाहती वो। हाँ उस प्रेम को कभी खोना नहीं चाहती वो।

हाँ, अब जो बचा है वो है एक लंबी खामोशी। वीरा धीरे धीरे आंसुओं से निकलकर एक मौन स्वीकृति बन गया है। अब किरदार, या यूं कहूं मुख्य किरदार, चला गया है मेरी प्रेम कहानी का, और कहानी दिल में वहीं ठहर गई है। शायद प्रेम में सबसे गहरी प्रतीक्षा वही होती है जिसमें इंसान जानता है कि वो नहीं आएगा, फिर भी दरवाजा बंद नहीं करता। हाँ, फिर भी दरवाजा बंद नहीं करता।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: हाथ ले वॉक कर रहे हम आओ सीट आपस में टॉक कर रहे हम
1: अरे हाथ कन्या।

0: hablar. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया है रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देने का तय किया था। उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
2: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
4: Rabi season ki MSP badhane se
5: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
4: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue, ye naye MSP aaj approve hue.
3: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone